0: टुकड़े टुकड़े।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुदय संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार।
1: नमस्कार। सोमवार 18 मई 2026 के इस प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। कल रात कोंटुरेल में हिंसा की आग भड़क गई। गोलीबारी और आगजनी से पूरा इलाका दहल गया। क्वाड बाइक को लेकर विवाद ने वहां पर खूनी रूप ले लिया और हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती रही। और एमएमएम के भीतर सोशल मीडिया को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। फेसबुक पेज को लेकर गजा उतीम और जुआना बेगौजी आमने सामने हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा भी गर्म हो गई है। गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों से जुड़ी एक घटना के बाद स्थल की पवित्रता के सम्मान को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त की। और आईबीएल तथा ईओ ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है, जो देश की निजी क्षेत्र की आर्थिक मजबूती और वृद्धि का संकेत माना जा रहा है। मॉरिशस ने ऑनलाइन व्यापार से जुड़ी अवैध तस्करी पर कार्रवाई सख्त करते हुए बढ़ती पार्सलों की निगरानी के लिए दक्षिण कोरिया के सीमा शुल्क विभाग से सहयोग लेकर सीमा नियंत्रण और प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम को मजबूत करने का फैसला किया है। विदेश में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों के कॉन्सुलेट चुनावों की प्रचार मुहिम शुरू हो गई है, जिसमें मॉरिशस सेशल्स क्षेत्र में 5 सूचियां मुकाबले में हैं और मतदान 31 मई को लिसे दी मस्काइन में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आगामी स्वीडन यात्रा को लेकर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से स्वदेश नेताओं, उद्योग जगत और भारतीय समुदाय में उत्साह है, जहां गोटेनबर्ग में एआई, ग्रीन ट्रांजिशन और उन्नत निर्माण पर उच्च स्तरीय वार्ताएँ निर्धारित हैं। वहीं लुजियाना के रिपब्लिकन सेनेट मुकाबले में ट्रंप समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा सेनेटर बिल कैसिडी को पहले चरण में बाहर कर दिया है। और अब जूलिया लेटवो, जॉन फ्लेम

0: व जॉन फ्लेमिंग के बीच रन ऑफ होगा, जिसका विजेता आम चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से भिड़ेगा। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है और अस्थिर दबाव से जुड़े बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज शाम से प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आमतौर पर सुबह के समय और रात और दिन के दौरान मौसम सुहाना होगा। शाम के समय तथा रात में बादल विकसित होंगे, विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर, और थोड़ी वर्षा होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर की जुवार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर पश्चिम और दक्षिण लगूनों में। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।
1: You're listening RM Free Radio.

इरशाद रब्बानी है, उर्दू तर्जुमा। कसम है फ़ज्र की और दस रातों की और जफ्त और ताक की, मसनद अहमद और तफसीर इब्ने कसीर में है कि इन दस रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की पहली रातें हैं, वितर से मुराद अरफा का दिन और शफा से मुराद कुर्बानी का दिन है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ज़िलहिज्जा के पहले दस दिनों में जब बाज़ार की तरफ जाते तो चलते फिरते तकबीरें कहते और लोग भी उनके साथ तकबीरें कहते।

वैसे तो इंसान को किसी भी लम्हे अपने मालिक के हकीकी की याद से गाफिल नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये अशरा चूँकि बहुत ही अजमत वाला है इसलिए इसमें खुसूसियत से ज़िक्र का हुक्म दिया गया है। सूरह अल बकरा उर्दू तर्जुमा, और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अशरे के आमाल सालेहा को जो मकबूलियत हासिल है वो किसी दूसरे

अमल को नहीं है। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की भी वो फजीलत नहीं? फरमाया, हाँ, सिवाय उस मुजाहिद के जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा दे। ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आते ही चलते फिरते, उठते बैठते, नमाजों से कबल और दीगर अवकात में भी तकबीरात ईद पढ़ते रहना चाहिए।

इन 10 दिनों में अरफा का दिन भी है, जिस दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोजख से आज़ाद फरमाते हैं। उस दिन के रोज़े से 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक गुज़श्ता साल के और एक आइंदा साल के। सुन्नत ये है कि 2 रोज़े रखे जाएं, यानी 8 और 9 ज़िलहिज्जा के। ईद का चांद देखने के बाद जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो उसे बाल और नाखून न कटवाना सुन्नत है।

सामईन, ज़िलहिज्जा के 10 दिन बड़ी फजीलत और अजमत वाले है। हमें चाहिए कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करें और इस्लाम का आखिरी महीना होने की वजह से अपने आमाल का जायज़ा लें और गुज़रे हुए साल का मुहासबा करें। ऐसा न हो कि हम नेकियों के इस मौसम में पीछे रह जाएं। सामईन कराम, आज के प्रोग्राम में हमने

ज़ुल्हिज्जा के महीने के मुतालिक आपके सामने चंद बातें रखीं। उम्मीद है इससे ईमान ताज़ा हुआ होगा। आपकी तवज्जो के हम निहायत शुक्रगुजार हैं। तकनीकी मदद के लिए यज का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना दिल का शो भक्ति में शक्ति। दोस्तों, सुबह सुबह हुई है, आपने अपनी आंखें खोली हैं और ये सुबह होने वाली है बहुत ही खास,

0: क्योंकि आज हम बात करेंगे उन शक्तियों की जो हमेशा साथ तो होती है, चाहे वो ये दिखे हमें या ना दिखे। चलो शुरू करते हैं भक्ति में शक्ति।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, जब कोई नई सुबह आती है ना, गणपति बप्पा को याद करो। वो हर नई शुरुआत के देवता हैं। हर नए दिन के स्वागत में उनका नाम लेना सबसे अच्छी प्रार्थना है। और एक बात, गणपति पापा के पास हाथी का दिमाग है, मतलब हर मुश्किल को चुटकियों में ख़त्म कर देना। तो आज के से सुबह से पापा का नाम लो और वो रास्ता दिखाएंगे, किसी भी तकलीफ को आपको बस सहने की भी शक्ति देंगे और आपको खुश भी करेंगे और कहेंगे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: भक्तों, महादेव के बारे में एक बात जो मुझे रोज सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि शिव जी सबसे शक्तिशाली हैं, फिर भी सबसे शांत कैसे? कितना बड़ा हम सब के लिए सबक है, जितना ज़्यादा शक्ति उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज़्यादा शांति। आज जब भी कहीं उलझें बस एक बार ओम नमः शिवाय बोलो और देखो अंदर से कितनी शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, शिव महादेव हमारे साथ है। हर हर महादेव।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, इस दुनिया की सबसे पहली शक्ति कौन है जानते हैं? जी हाँ, माँ। और जगत की माँ, माँ आता आदि शक्ति, जिन्होंने इस सृष्टि को जन्म दिया, जो हर जीव में बसी हैं और हर औरत में, हर माँ में, हर दिल में है। आज माँ में बसे हैं आप और मैं, और माँ हिम्मत देती है हर तकलीफ़ में। अगर कोई भी तकलीफ़ में होती है तो आपको बस उन्हें याद करना है और कहना है जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। वो हमेशा देती हैं, वो हमेशा साथ देती हैं, हमेशा साथ खड़ी रहती हैं, जैसे हमारे पास एक हमारी माँ भी है।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, श्री हरि यानी विष्णु जी पालनहार, जो पालते हैं, संभालते हैं, टूटने नहीं देते। कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बिखर रहा है, उस वक्त याद करो नारायण देव को। जो नारायण देखते हैं उसे भी संभाल लेते हैं। तो अगर आपको लगा है कि आप थके हुए हैं, अगर थोड़ा सा डरे हुए हैं, तो बस इतना जानो कि श्री हरि के हाथ में हो तुम, और बस वो तुम्हें संभाले बैठे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। बस हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। 11:18 हो चुके हैं सुबह के। आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति पूनम के साथ।
1: RM3 Radio. माँ शक्तिपति शक्तिमान भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। इन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर विष्णु सहित ब्रह्मा जी ने सकल सृष्टि का सृजन किया। इन्हीं के उत्साह से विष्णु जी जगत का पालन पोषण करते हैं। भगवान शिव अकारण ही जीवों पर करुणा वृष्टि करते हैं। उनका हृदय जन कल्याण के ही ध्यान में सदा लीन रहता है। आशुतोष देवाधिदेव महादेव की दया और कृपा का पार पाना सर्वथा असंभव है। सर्व विदित ही है कि जब महाविनाशी हलाहल विष का भय सकल त्रिलोक में व्याप्त था और सभी आध्यात्मिक शक्तियां किम कर्तव्य की विषम स्थिति में थीं, ऐसी विकट परिस्थिति में लोक हित के लिए भगवान भोले शंकर ने अपने समस्त योग बल के द्वारा उस भयंकर गरल का पान किया और संसार को त्याग तथा परोपकार का अनमोल ज्ञान दिया। ऐसे त्याग और तप की मूर्ति विश्व कीर्ति भगवान विश्वनाथ का पुण्य स्मरण करते हैं।

0: भक्तों, ये था आज के हमारे भक्ति में शक्ति के पल। गणपति बप्पा की हिम्मत, महादेव की शांति, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद और श्रीहरि का साथ, ये सब आपके साथ रहे। मैं थी आपके साथ पूनम आरंत्री, रेडियो मनोरंजन पर। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हाँ, भक्ति में दम रखना। श्री हरि की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री गणेश। इसके बाद आएंगे मेरे प्रोग्राम के बाद डेविड, आप उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। तब तक आप सबको ओम नमः शिवाय।
1: RM3 Radio.

很怀疑你最未等到只有这枯枝，苦恋几多次，悉心栽种全力贯

0: आइए सुनते हैं समाचार राशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। कौतुगल में कल शाम एक स्वास्थ्य ट्रक हिंसा और अफरा तफरी का केंद्र बन गया। इलाके में उस समय भारी तनाव फैल गया जब हिंसक झड़पों ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर कई धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें गोली चलने की आवाज बताया जा रहा है। तनाव की मुख्य वजह इस वॉकिंग ट्रक पर क्वाड बाइक की मौजूदगी थी जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया। पहले कहा सुनी हुई फिर मारपीट शुरू हो गई और देखते ही देखते स्थिति बेहद हिंसक हो गई। झड़प के दौरान तलवार और बंदूक का इस्तेमाल किया गया। दो वाहनों को आग लगा दी गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया जिसमें स्पेशल सपोर्ट यूनिट की एलईडी टीमों को भी शामिल किया गया। कल रात 9 बजे तक पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने और हालात काबू करने की कोशिश में जुटी हुई थी। गोलीबारी और तोड़फोड़ की इन गंभीर घटनाओं की जाँच जारी है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। गंगा तालाब में इटालियन पर्यटकों ने एक समूह से जुड़ी घटना के बाद पर्यटकों के एक समूह से जुड़ी घटना के बाद स्थल की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा के सम्मान को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है। विशेष रूप से पर्यटकों के पहनावे और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दो बड़े समूह और हर साल बढ़ते हुए प्रभावशाली आंकड़े आईबीएल और ईओ ग्रुप ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए। आईबीएल ने अपने वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में 94.8 बिलियन रुपए का कारोबार दर्ज किया जो 15% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का परिचालन लाभ भी 25% बढ़कर 7.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। और साथ में आपको ये भी बता देती है कि ईओ ग्रुप ने 22% की वृद्धि के साथ 3.8 बिलियन रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस वृद्धि में होटल क्षेत्र का अहम योगदान रहा जहाँ लाभ 43%

प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि समूह का कुल कारोबार स्थिर रहते हुए 34.4 बिलियन रुपए पर बना रहा। कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार को जारी रखते हुए नैरोबी में अपनी मौजूदगी मजबूत की है और जांजिबा में एक 5-star होटल के अधिग्रहण की योजना की पुष्टि की है। और आज मॉरिशस का कला जगत शोक में डूब गया है। प्रसिद्ध चित्रकार मूर्ति नागालिंगम का एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद कल 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूर्ति नागालिंगम केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि कला और संस्कृति के सशक्त निर्माता थे। वे एमजीआर के फाइन आर्ट्स के पूर्व निदेशक थे और 43 वर्ष पहले स्थापित किए गए मशहूर सालों दे मेह के संस्थापक भी थे। मूर्ति नागालिंगम का अंतिम संस्कार आज दोपहर किया जाएगा। अंतिम यात्रा दोपहर 3:30 बजे एलियन सन सेंटर से निकलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेदरलैंड दौरा रविवार को समाप्त हो गया। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। रक्षा, व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्निक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत नेदरलैंड ने संबंधों को नई रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने पर जोर दिया। दौरे को भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे सुन पाएंगे चंद शोक समाचार।

0: Chok sama cha suni mon désir route plein manyome mon désir route plein manyome 54 sal ki 54 years old ki Sheila Gazadhar श्रीमती शीला गजाधर पैदाशाम नंदूर और जनीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1 बजे उनके पति श्री रविंद्रनाथ गजाधर के घर पैनवानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टी एट 1 PM नंबर 12 अवेन्यू लासोस पाल्मा काट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सोनिया पैदाशाम ईतू और जिन्हें आजी गोनू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर लासोस पाल्मा काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाएगी। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। मोदेजिया रोड पैनमानियों में 54 साल की 54 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शीला गजाधर पैदाशाम नंदलोल और जिन्हें नीता के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके पति रविंद्रनाथ गजाधर के घर पैनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM कॉम्बेलैंड नंबर एक वाकुआ में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्री रविन कुमार ताजा जिन्हें तेजा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा ताजा के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टिटी एट 3 PM मोसलमो ग्रीग्री सुयाक में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती तिहा जिन्हें तायन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके बेटे लेकराम भरत सिंह महेश के घर ग्रीग्री सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: दिन के 12:10 हुए हैं, आप विदिता के साथ दे रहे हैं. जी हाँ, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का. कैसे हैं आप बताइए, हाल चाल सब बढ़िया, सब ठीक. आ गई हूँ आपके लिए लेकर चंद खूबसूरत पुराने गाने. प्रोग्राम है आपके लिए सुहाना सफ़र.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलो तो यहाँ पर हमारे पुराने गीतों का सफर तो शुरू हो ही गया है। आप कहाँ से सुन रहे हैं? आप हमें अगर चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं 4020 7 0 पर। अभी फ़िलहाल के लिए तो गीतों के इस हसीन सफ़र में एक खूबसूरत सा गाना लहराने गया है और आवाज़ें होंगी लता जी और किशोर जी की।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी हाँ, सफर सुहाना तभी होता है जब हमारे हम सफर खुश होते हैं, और हमारे हम सफर खुश तभी होते हैं जब उनके प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने चलते हैं हमारे रेडियो मनोरंजन पर। तो बताइए कैसे हैं, वीकेंड तो अच्छा गया होगा भाई। हमारा भी वीकेंड काफ़ी मस्त ज़बरदस्त था, और सर्दी के इस मौसम में तो बस आजकल पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि ज़्यादा पकौड़ा ना हो जाए, बल्कि पकौड़े जो है वो पेट में नज़र आने लगते हैं, गालों में नज़र आने लगते हैं, डबल चिन होने लगता है, टोन बाहर आ जाती है, इसीलिए थोड़ा बच के रहना। और एक चीज़ शायद आपने नोटिस की होगी, सर्दी के मौसम में लोग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर से निकल कर गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की ओर बढ़ जाते हैं, तो इनसे भी शुगर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर पेस्ट्रीज आते हैं, गर्मा गर्म पैनकेक्स आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी के लिए लंच ले रहे हैं बना बेची।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। सुहाना सफर प्रोग्राम में चलिए देखते हैं अभी कौन है जो हमसे बात करना चाहते हैं। शायद उनके दिल में भी कोई बात होगी जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो बेजीता जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, गायत्री जी।
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ गायत्री जी, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं इस बदलते मौसम में कुछ ठीक नहीं थी।
0: तो आप अच्छी हैं? अच्छी हाँ। नहीं है
1: हाँ। अभी के लिए तो मैं कुछ ठीक हूँ पहले से।
0: बताइए।
1: कभी कभी आपसे बात नहीं हो पाती थी।
0: अभी तो बात हो रही। तो,
1: इसके लिए तो मैं कुछ क्षमा चाहूंगी आपसे, क्योंकि कुछ देर से बात हुई।
0: अरे कोई बात नहीं, बस आप आ गए, हमारी बात हो रही है काफी। बताइए हाँ, क्या सुनेंगे आप?
1: क्या कहें, कभी कभी हमारी नजदीकियां दूरियां में बदल जाती
0: हैं। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि आप भले कितने भी बीमार हो, जब मैं ऑनियर होती हूँ तो रेडियो सेट आपका वॉल्यूम तो हाई ही होता है।
1: हाँ जी, ये आपके बिना तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है।
0: बताइए क्या सुनेंगे आप?
1: ये गानी है, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ।
0: कौन सी फिल्म?
1: ये फिल्म है शायद प्यार का रास्ता।
0: प्यार का रास्ता, ठीक है। और गाना किसके लिए?
1: गाना मेरी छोटी बहन अमृता के लिए। उनकी बेटियां हैं गिरिशा, उनकी बेटियां हैं नेहा, क्षिति और दिव्या
0: जी,
1: और भाभी है मीरा, और उनकी बेटियां हैं मेधा और गिरिशा।
0: ठीक है, प्यार का रास्ता आपने बोला ना।
1: हाँ, आपके लिए भी, आपके सहयोगियों के लिए भी।
0: वैसे मुझे प्यार का तराना मिला, प्यार का पहला खत मिला, प्यार का मौसम मिला, प्यार का मंदिर, प्यार का कर्ज, और आपने बोला प्यार का
1: रास्ता।
0: प्यार का रास्ता तो मुझे मिल ही नहीं रहा। ये कौन सा रास्ता है जो मुझे नहीं मिल रहा है?
1: ये प्यार का रास्ता नहीं मिल रहा,
0: बहुत कठिन है ये रास्ता। प्यार का सागर भी मिल गया मुझे, लेकिन प्यार का रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझको। कोई बात नहीं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने कहा प्यार का रास्ता, तो प्यार का रास्ता हम ढूंढ लेते हैं। हाँ। और आपने कहा कि गाना है ये
1: खामोशियाँ

0: ये तन्हाइयां मोहब्बत की दुनिया में इतने जवां।
1: ठीक है, तो हम ढूंढते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी।
0: शुक्रिया, शुभ दिन जी।
1: नमस्कार,
0: हैव अ गुड टाइम वीवर्स।
1: थैंक यू, बाय बाय।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम है सुहाना सफर और हमारे हमसफर हमारे साथ टिकटॉक पे लाइव जुड़ चुके हैं। चले जी, यहाँ पर घड़ी भी इशारा कर रही है, दिन के 12:40 हो रहे हैं। विदित आपके साथ हैं और यहाँ पाकिस्तान से हमारे साथ शाहिद इकबाल खान जुड़ गए हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हाई ट्रैवल, हाउ आर यू? हेलो एजे, कैसे हो आप? तरुण कहती हैं हेलो हसीना, हेलो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम मस्त ज़बरदस्त। चले जी, यहाँ पर एजे का हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इतने सारे लोग जुड़े हमारे प्रोग्राम के साथ। मैं जानती हूँ आप लोग बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिलता, लेकिन आवाज़ें आती जाती रहती हैं। तो जान लो अगला गाना आपके नाम हम डेडिकेट करेंगे और अंजू के लिए भी नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और यहाँ पर आपने एक गाने की फरमाइश की है, जी हाँ, अब पाकिस्तान से हमारे दोस्त शाहिद ने फरमाइश की है और हवालात फिल्म का गाना तू मुझसे प्यार करती हैं। ओके, मैं ढूंढ लूँगी, अगर नहीं है तो हमारे जितने भी लोग टिकटॉक में हैं वो ढूंढ लेंगे गाने को। और घबराए नहीं, यहाँ पर जब कोई ऐसा होता है ना कि कभी हम गाने की फरमाइश करते हैं और जब हमें फिल्म का नाम याद नहीं रहता या हमें गाने के बोल याद नहीं रहते, तो यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं ना टिकटॉक पे, सबके सब एक के बाद एक कमेंट करते जाते हैं और फिर उसके बाद फिल्म का नाम हो, गाने के बोल हो, सब पता चल जाता है। चल, यहाँ पर बाबू हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें। एंड यहाँ पर कविता अन्नू आ गई हैं, विद्या नाइक को, और साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे और भी बहुत सारे दोस्त जिनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज जैसा जदा आपके लिए गाना होगा, त्रियोली से आप साथ दे रहे हैं। इशिका नमस्कार, कैसे हो? हाय रोहित, वी हैव रोहित फ्रॉम सुरीनाम, वेलकम रोहित आपका प्रोग्राम में। उन्होंने फ्रेंच में लिखा है रेतैम। हाँ वही होता है, उसका मतलब आई लव यू होता है रोहित, जान लीजिए। चलिए जी, यहाँ पर आपके लिए भी मॉरिशस से बहुत सारा प्यार। आप कहते हैं कि यहाँ तो सुबह 5:40 हुए हैं भाई और आपके यहाँ 12:40। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हेलो नीन, कैसे हो आप? स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और चलिए इसी के साथ माधुरी जी का 1, 2, 3 करते हुए वेलकम करते हैं। इंदिरा राम दुनिया हमारे साथ है एंड तरुण भी हमारे साथ जुड़े हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: हेलो बेबीता।
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून। हाँ, ये इंग्लिश में बात की, इसका मतलब मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, कैसे हो आप?
1: आई एम ओके, यू?
0: आई एम फाइन।
1: सो लॉन्ग टाइम नो टॉक टू यू।
0: या लॉन्ग टाइम।
1: सो बिकॉज इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट।
0: कोई बात नहीं, अभी मैं अब आपके घर में ना वो लगा दूंगी, कैमरा लगा दूंगी मैं, जब आप फोन करो।
1: व्हेन आई एम कॉल यू, यू नॉट टेकिंग माय कॉल।
0: या व्हेन यू आर कॉलिंग मी,
1: आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई।
0: हे भगवान, क्या करूं मैं इनका, क्या करूं, बताओ मुझे मैं क्या करूं।
1: आप मुझे
0: देखो, आप मुझे झगड़ा करोगे तो मैं भाग जाऊंगी।
1: नो नो, आई नो व्हाट,
0: आप झगड़ा करो मैं भाग जाऊंगी। आप बोलो, मैं अभी बताओ क्या सुनोगे।
1: बिकॉज आई लव मनोरंजन रेडियो।
0: आई नो यू लव रेडियो मनोरंजन। क्या सुनोगी, क्या सुनोगी बताओ।
1: आई लव एवरीवन
0: जी।
1: सो वेरी नाइस टू टॉक टू यू टुडे।
0: सेम हियर,
1: सेम टू।
0: आप बताओ क्या सुनोगे।
1: सो आई वांट टू लिसन मोहम्मद रफी जी।
0: जी।
1: द ट्रेन।
0: जी।
1: गुलाबी आंखें जामुन जैसा।
0: जामुन जैसा, ये कौन सा गाना है? गुलाबी आंखें जामुन जैसा।
1: गुलाबी आंखें गोया देसिन जैसा।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, हम वो गाना चलाते हैं। एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं।
1: No,
0: देखते हैं।
1: listen to me.
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: Excuse me.
0: हाँ जी।
1: So, I have talked to you a long time and I have not talked to you because

0: But I like to talk to you, and I am very happy to talk to you.
1: Ji.
0: And do it yourself. God bless you, and me bless you. You don't forget everyone is listen my song. Thank you very much.
1: Thank you, Manoj ji. Bye bye. एक और कॉलर हैं, इनसे मिलते हैं. हेलो.
2: हेलो.
1: हेलो जी, नमस्कार जी. आपका नाम?
2: रितू, मैं हिंदू बोल रही हूँ.
1: आपका नाम क्या है?
2: नंदू. आपका नंदू बोल रही हूँ.
1: नंदू?
2: नंदिनी.
1: आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. मुझे लगता है फोन में कोई प्रॉब्लम है. जी, आपके फोन में ही प्रॉब्लम है. मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है. आप अपना नाम फिर से बताएंगी?
2: रागिनी.
1: रागिनी, देखा आपने, रागिनी बताया, आप सुनाई दिया मुझे. चलिए बताइए, आप रागिनी जी क्या सुनना चाहेंगी?
2: आज तो हमें पेरिस की सैर करा दीजिए.
1: पेरिस की सैर कराना है?
2: पेरिस का गाना लगा दीजिए.
1: ठीक है जी, लगा देंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग रागिनी जी. बाय बाय. तो हमारे बाकी के जो दोस्त हैं,
3: यू लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो रेडियो,
1: उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे. और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन? वैसे काफ़ी सारी फरमाइशें आई है. गायत्री जी का गाना हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है. और यहाँ पर तरुण हमारे साथ हैं, आपने भी गाने की फरमाइश की है, तो आपका गाना थोड़ी देर में. और साथ में यहाँ पर हमारे हैं मनीता, हर हर महादेव, शिवानी, वी हैव शांता सुकालिंगम, इंदिरा रामधोनी, उनकी बेटी प्रतिमा चेष्टा और रेना के लिए. साथ में सरिता नौजान हमारे साथ हैं, वी हैव युधिश. और बाकी के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी हम कहेंगे वेलकम, स्वागत है आपका. मिस्टर नूरुद्दीन बुराही जो कि फ्रांस से हमें सुन रहे हैं, बोंजूर, वेलकम आपको भी. हेलो गोपी, कैसे हो? देखो गोपी भी आ गए आज हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. निशा रघुनाथ और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं निशा भवानी एंड देवी देवी कियानी, लव यू टू, थैंक यू. और साथ में यहाँ पर अक्रम हमारे साथ हैं, कहते हैं मुझे आप बिल्कुल निरूपा रॉय की तरह क्यों बिहेव करी है, वो मैं खांस रही थी ना इसलिए झटका लगा भाई, झटका. चलो जी, थैंक यू सो मच, साथ दे रहे हो, गाना एंजॉय करो. एक दो दिन करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हमारा आ गया है आपके लिए, आरती जी. और साथ में गाना आया है निशा के लिए जो हमें सुन रही है, देख रही है फ्रॉम ब्रिस्बेन. हियर वी गो. कवि है फ्रॉम इटली. हेलो. चलिए इसी के साथ धीमा, उनके लिए भी गाना होगा. और वनक्कम नीला जी, कैसे हो आप? हेलो माय क्वीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. यहाँ पर हमारे साथ इंदिरा राम रेखा है और गाना आएगा आपके लिए. और ये गाना अंदनी के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है. और मनीता जी, प्यार से ये गाना आपके नाम.

0: RL3 Radio.
1: चलिए इसी गाने के साथ अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक बजे के समाचारों की ओर. चलते चलते ये गाना नीलिमा मनोज साधना राम लवत उनका आज बर्थडे है उनके लिए गाना होगा. बबीता की तरफ से शीला सिधारी जितेंद्र दुलवा साहिल कीतिका अखरम सभी हमारे साथ हैं. कल्याणी हरी जी हमारे साथ हैं. नेक्स्ट गाना आपके नाम और रजिया खान आपके लिए भी.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं समाचारों की ओर। सुहाना सफर प्रोग्राम को हम समाचारों के बाद जारी रखेंगे। बस आप लोग अपने मैसेज भेजते रहिएगा, नंबर है 5250-6200, नहीं तो हमारा टिकटॉक है लाइव, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
1: आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार गिरीशा, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। कांटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। कल एक फिटनेस ट्रैक को लेकर दो समूहों के बीच झड़पें हुई। प्रारंभिक जानकारियों के मुताबिक पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रैक पर कुछ लोग क्वाड बाइक्स चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया और जहां दो वाहनों को आग लगा दी गई और गोलीबारी भी की गई। मॉरिशस की कुछ अस्पतालों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोर्टलुइस के जीटो अस्पताल में नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें कलर कोड के आधार पर प्राथमिकता देने की प्रणाली लागू की गई है। अब मरीजों का इलाज उनकी स्थिति की गंभीरता को देख कर किया जा रहा है, जहाँ इन्हें लाल, पीला और हरा कोड दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के अनुसार हर मिनट जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पैदा कर सकता है, विशेषकर दुर्घटना, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट के मामले में। इस अस्पताल में एक और नई सुविधा ये है, जो आपातकालीन विभाग में प्रतिदिन 650 मरीजों तक को देखता है। अब सामी के इमरजेंसी डॉक्टर सीधे इमरजेंसी यूनिट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विदेश में अरब अमीरात में कल रविवार को बाहका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक ड्रोन हमला एक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया है। इसी बीच वहां के राष्ट्रपति के एक सलाहकार ने इस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की है और संकेत दिया है कि इसमें ईरान की

0: ईरान शामिल हो सकती है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मुसलमान ग्रिगरी सुयाक में 77 साल की 77 years old श्रीमती पद्मावती तिहा, श्रीमती पद्मावती तिहा जिन्हें लोग तायन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम साढ़े तीन बजे इनके बेटे लेख राम भरत सिंह महेश के मकान मुसलमान ग्रिगरी सुयाक से उठाकर कौ गोपाल शामुनी किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। कौबेला नंबर एक वाकुआ में 64 साल के 64 years old श्री रविंद्र कुमार ताजा जिन्हें लोग तेजा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी श्यामा ताजा के मकान कौबेला नंबर एक वाकुआ से उठाकर थोमा मेर कृष्णशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और नंबर 74 एवेन्यू द इरोंडेल सुदनाक में 71 साल की 71 years old श्रीमती वीरामा जोगिया पैदाशी नाम कोतेदा सन्यासी और जिन्हें लोग बामा नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान नंबर 74 एवेन्यू द इरोंडेल सुदनाक से उठाकर फिनिक्स कृष्णशाम भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

0: ना सफर सुहाना सफर
1: हमारे दोस्त कब से इंतजार कर रहे हैं तो चलिए देर न करते हुए अगला गाना हम बबीता बुलाक की माया राम दोस्त अनोखी प्रतिमा दुखित राम कृष्णा विमी प्रणय अंजू जो कि कनाडा से हमें सुन रही है कहती है यहाँ पे तो 5 बजे हैं जी मुझे पता है आप साथ हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है थैंक यू विहाब तारा जना कविता दोलीप सलोनी गयादीन फिदू देवीना निवैन कतिबा लोलिता विमा पेंचिया अमित अनिता है अप्रिका फ्लाक से सीता सूरज यश हंस राम धोनी बुदाई हीरो सुमारू फैमिली तनवीर खालिद का वेलकम करते हैं हेमा हमारे साथ हैं अब्दुल और सायरा बानू और साथ में हमारे साथ हैं दोगीन उनका भी हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में और साथ ही साथ में ये जो प्यारा सा गाना है हम नितिश के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और यहाँ पर संजय बुधवा हमारे साथ हैं उनके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करते हैं हमारी प्यारी सी परी के लिए जो शायद आज बहुत ज़्यादा बिजी है लेकिन कहीं ना कहीं रेडियो सुन रही हैं रागिनी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वागत है आपका चंदनी सुकन आपको गाने पसंद आ रहे हैं जानकर हमें बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत आपको शुक्रिया विशाल भर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर शालीमार फिल्म के गाने की फरमाइश आई है शालीमार ठीक है वो गाना हम अभी आपके नाम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे फिलहाल अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना आ रहा है ये किशोरदा की आवाज़ में है आपको ज़रूर पसंद आएगा मिमी भी एंजॉय कर रही है गाने लीजिए गाना है किशोरदा की आवाज़ में
2: You're listening to RM3 Radio Man

0: खाना सफर खाना सफर।
1: बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना है। कई सारे लोगों ने कहा अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है, पता है इसीलिए तो चलाते हैं, है ना। चलिए तो आप लोगों की फरमाइश भी हमारे पास नोटेड है, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे गाने चलाने की। टिकटॉक पे हमारे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूँ, बस थैंक यू ही बोल सकती हूँ और नेक्स्ट गाना आपको डेडिकेट कर सकती हूँ, है ना। चलिए जी, अब यहाँ पर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी वेलकम, नमस्कार, कैसे हैं आप। यहाँ पर साहिल ने गाने की फरमाइश की है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातों हैं, बातों का क्या, बातों का सब कुछ होता है ना। इंसान बात नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे दोस्त, है ना। चलो जी, आज भाई विक्की गोपाला का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरी फैमिली की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट गाना जो होगा अजय लक्ष्मण जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, वो भी हमें सुन रहे हैं। स्वागत है आपका प्रोग्राम में और यही गाना हम आपके लिए चला रहे हैं। माया जी, आपने बोला कि आपको ये गाना बहुत पसंद है, आपकी बहन को शायद ये गाना बहुत पसंद है, तो चलिए आपकी बहन प्रेमिला के लिए भी और साथ में हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे मुस्कुराता हुआ गुनगुनाता हुआ मेरा यार, ये गाना मेरे पास ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में है, तो इसको मैं चलाने में ज़्यादा देर नहीं करूँगी। फिलहाल आशा जी आ रही हैं। कहती हैं जिंदगी से प्यार करना सीख ले, क्योंकि जो भी है वो अभी है, यही है, कल क्या हो क्या पता। बात तो बिल्कुल सही है ना।

0: RM3 Radio.
1: बालामुत्तु स्वामी, सुल्ताना कांदाई, संजू, माओ मिला और पापा सुरेश, साथ में सुरेखा, रेणुका, हंसवी, शमा, उनके भाई राकेश, उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। नंदा बिरजनोत, उनके बेबी सरश के लिए जो पालमाओ से उनके लिए गाना मांग रहे हैं, वहीं पे जय का वेलकम है। अंजू, शाइना एंड रेहाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। प्रीति, आपका भी हम वेलकम करते हैं। मनोज पिर्थी, अपनी वाइफ विमला के लिए गाना मांग रहे हैं। सेबास्तीपुल के पूरी फैमिली, वैदेही, आपके लिए गाना।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। प्रोग्राम है सुहाना सफर। यहाँ पर जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए उनको हम डेडिकेट करते हैं गाना। ईशा का आज बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे। और वहीं पे अंशा वर्धन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी हैं, 6 साल की हुई हैं, शामली से हैं। और साथ में जो बाकी के हमारे दोस्त हैं, सूर्या, अभिषेक, सुशीला, खुशी, लीना बाई, लाफलोगा से सुनील नंदा हमारे साथ जुड़े हैं। परी का हम स्वागत करते हैं, गेट वेल सून, थोड़ी बीमार हैं, घर पर हैं लेकिन फिर भी हमारे गाने इन्जॉय कर रहे हैं। एंड डॉक्टर महविश, आपका भी हम अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, कम करते हैं। चलिए भाई, अब ऐसा करना है कि हमें एक साथ जो नेक्स्ट गाना है प्यार से सुनना है, क्योंकि ये गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए थोड़ा सा मूड बदलने के लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और जितने भी लोगों को मुकेश साहब की आवाज़ पसंद है, उनके गाने अच्छे लगते हैं, चलिए भाई पेश है आपके लिए दीवाना फिल्म का गाना।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम है हमारा और प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम अभी बीसू हमारे प्यारे दोस्त का जो साथ दे रही हैं, और राधिका बंसी, साधना, रेशमा, सबरीना, मुस्ताक खान, नासीम, आपका हम वेलकम करते हैं। उगियन फ्रॉम भूटान, क्या बात है। और यहाँ पर चलो हम ढूंढते हैं अभी साहिल, आपने क्या भेजा है। फ़िलहाल तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए हैं और हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो रहा है मैसेज पढ़ना। नमस्ते उगियन, आपका हम स्वागत करते हैं। रीना जी हेलो, कैसी आप। हेलो शिवम, आपने भी कहा मेरी मैसेज नहीं पढ़े, शायद आपका मैसेज ऊपर चला गया होगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं अभी, आई स्टिल हैव 23 मैसेजेस टू रीड आउट। यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे आ रहे हैं ना। रजनी महावीर जी नमस्ते, स्वागत है आपका। और साथ में हम वेलकम करते हैं आप सभी हमारे दोस्तों का, एंड प्यारे प्यारे हमारे जो लिसनर्स हैं हमें कॉल करते हैं, हमें मैसेज भेजते हैं। चलिए जी, उनके लिए गाना होगा और ये गाना मेरी पसंद का गाना है, प्लीज़ इसको एंजॉय करें एंड इसको कितना प्यार करते हैं बताइएगा ज़रूर। ये गाना सीधे मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंचने वाला है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट गाना, सुनिए।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए जी, प्रोग्राम में तैयब भोला जी का हम वेलकम करते हैं। और किसी ने गाने की फरमाइश की है, कहते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना है हमारे प्यास तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, अगर आपको पसंद है तो गाना हम चला सकते हैं। नहीं जी, कहते हैं कि ये गाना सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट गाना है और लॉट्स ऑफ ट्रूथ इन दिस सॉन्ग ऑफकोर्स है इसमें। एंड साथ ही साथ यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी का सच में यहाँ पे नासिम बहुत खूबसूरत दिखती हैं इस गाने में, और वो तो है ही खूबसूरत, अभी भी खूबसूरत है वैसे ही है। चलिए जी, नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम उनके लिए जो साथ दे रहे हैं, और साथ ही हमारे दिनेश गोपी वेलकम, स्वागत है आपका। और साथ में जो नेक्स्ट गाना होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए वर्षा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो गाना होगा आपके लिए, वैसे अभी अभी बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, इसलिए जितने भी लोग टिकटॉक पे हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं, आपको एक बार फिर से थैंक यू सो मच, लाइक करना फॉलो करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए, जब हम गाने की बात करते हैं तो गाने जो हैं अलग ही तरीके से वो अपने राज बताते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं। एक गाना इधर भी है जिसमें काफ़ी सारा सच है, अगर सुनो तो जानो।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना क्या हुआ तेरा वादा वो कसम लेकिन इरादा मेरा जाने का नहीं है लेकिन घड़ी देख रही हूँ कि जाना तो पड़ेगा ही अब क्या करें जाने से पहले एक गाने की फरमाइश आई है प्यार झुकता नहीं इस गाने को डेडिकेट करते हैं रानी प्रकाश नालिनी गुलाम साथ में शशि मिस्टर मिसेस चौधरी अनिल राधा रिया इन सब के लिए मेरे जाने का टाइम हो गया है थैंक यू यहाँ पर हमारे साथ है मोहम्मद जफीर हुसैन सलारू सलाम आपको भी जा रही हूँ कल नहीं परसों वापस आऊँगी इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में और गाना होगा आपके लिए रिया कहती है आप जा रहे हो हाँ तो आप अभी आ रहे हो ना इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ सपना राम तोहल आपका भी स्वागत है एजे थैंक यू सो मच थैंक यू अब आपसे मुलाकात मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं आऊँगी

वापस यानी कि वापस आ रही हो प्रीति. ओके थैंक यू सो मच. यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं तो सारे के सारे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा. चलती हूँ, नेक्स्ट गाना आपके लिए. गुनगुनाती चलिए, मुस्कुराती चाहिए, प्यार से रहिए. और ज़िंदगी में अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कभी किसी को गम भी मत देना, बस खुश रहना. और थैंक यू सो मच अभिषेक. अभिषेक कहते हैं प्रॉमिस इट्स अ सीक्रेट थिंग. हर किसी को वैल्यू नहीं आता, हर किसी को वैल्यू सच में नहीं आता, इसलिए मैं वादे नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ. वेडनेसडे को मिलते हैं 12 बजे इन योर सुहाना सफ़र. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पड़ी सभी को, मेरा नमस्कार। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाता है। मैका वर्सेस ने आयात स्तर को मापने के लिए एक नई पद्धति अभी शुरू की है, जिसमें दो संकेतकों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। मूर्ति नगलिंगम की मौत की खबर कल एक सदमे की तरह सामने आई। कलात्मक समुदाय के भीतर कई लोग इसे बेहद दुखद क्षति बता रहे हैं। मूर्ति नागालिंगम उन कलाकारों में से थे जो साझा करने की भावना और अतुलनीय विनम्रता से प्रेरित थे। इस वर्ष जुलाई में आयोजित होने वाला सालों दो में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, क्योंकि इसी महान कलात्मक आयोजन की स्थापना उन्होंने की थी। कांटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। कल एक फिटनेस ट्रैक को लेकर दो समूहों के बीच झड़पें हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रैक पर कुछ लोग क्वाड बाइक्स चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया, जहां दो वाहनों को आग भी लगा दी गई और गोलीबारी भी की गई। विदेश में संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी स्थित पावर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। अबूधाबी के अधिकारियों ने इसे खतरनाक उकसावा बताया है। वहां के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 3 ड्रोन पश्चिमी सीमा की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात में घुसे थे। 2 ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन तीसरे ने अबूधाबी में स्थित बाहाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भीतरी सीमा के बाहर एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई। और उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैले एबोला को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ये रोग बुंदीबुगियो वायरस की वजह से हो रहा है। कोंगो के अलावा युगांडा में भी बुंदीबुगियो वायरस के मामले सामने आए हैं, वहां भी इसे स्वास्थ्य आपातकाल माना गया है। WHO के मुताबिक कोंगो के इतुरी प्रांत में अब तक 246 संदिग्ध मामले और 80 मौतें रिकॉर्ड की गई है। वहीं युगांडा की राजधानी कंपाला में 15 और 16 मई के बीच महज 24 घंटों में 2 मामले सामने आए। इनमें से एक की मौत

0: हो चुका है हालांकि दोनों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं मिले हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में शोक समाचार। मोसलमा ग्रीग्री सुयाक में 77 साल की 77 years old श्रीमती पद्मावती तिहा जिन्हें लोग तायन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज शाम 3:30 इनके बेटे लेखराम भरत सिंह महेश के मकान मोसलमा ग्रीग्री सुयाक से उठाकर कौ गोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। कौबेला नंबर एक वाकुआ में 64 साल के 64 years old श्री रविंद्र कुमार ताजा जिन्हें लोग तेजा नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3:00 इनकी पत्नी श्यामा ताजा के मकान कौबेला नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थौमामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:00 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Centre 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. संस्कृति की बातें, संस्कृति की बातें।
4: नमस्ते, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सबको के बहुत बहुत स्वागत बा। संस्कृति की बातें कार्यक्रम के प्रसारण होवेला आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और MBC के सहयोग से। और ई बखत आप ई प्रोग्राम सुनत हवा रेडियो मनोरंजन पर। ई प्रोग्राम के प्रसारण हुआ था हमने के MBC के फेसबुक पेज पर भी और एक फिर से प्रसारण हुई MBC टीवी के तीसरा चैनल पर। संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने अपन संस्कृति और अपन संस्कृति से जुड़ल जोन भी बात बा ओकर पर बातचीत करी लाजा। और आज के कार्यक्रम काफ़ी दिलचस्प कार्यक्रम रही। आज हमने बात करब जा कैसे भोजपुरी गीत में संस्कृति के बात जुड़ल बा। कुछ समय आगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने देख ली जा एगो जोन वरिष्ठ कलाकार ललन गीता गजाधर वो कैसे अपन हर एगो गीत में संस्कृति के साथ साथ हमनी के जो धरोहर बा वो सब प्रस्तुत कर ले हवन। आज हमने संगे एगो नवा कलाकार हवन, एगो नवा पीढ़ी के कलाकार हवन और आप हवा कुणाल हिरीलाल। नमस्ते कुणाल जी।
5: नमस्ते सभी लोगन के।
4: ये कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा।
5: धन्यवाद।
4: कुणाल, हमने के भोजपुरी क्षेत्र में एगो ऐसन गायक हवन जो साल 2008 से अपन पहला कदम जमेले हवन और जब से इनकर कदम ई भोजपुरी गीत संगीत में पड़ल तब से लेके आज तक आप एगो स्थापित कलाकार हवा। आपके गीत सब कोई बहुत पसंद करेला और आपके जो हालिया गीत रहल मार ताली मार ई बरिस के वो बहुत मशहूर होल बा। और आज आपसे ई कार्यक्रम में हमने बातचीत करे से आगे सबसे आगे आपके जुबानी आपके परिचय जाने चाहती सा कि आप कहाँ से हवा और भोजपुरी में आप गीत गावे के प्रेरणा आपके कैसे मिलल।
5: पहले तो नमस्ते सभी लोगों के और जो लोग हमने सुनता और देखा था जा ए, हम हैं कुणाल हिरीलाल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉइंट ऑफ व्यू गाँव है जहाँ लामे डम्बोरेवा
4: और
5: लेनो में त्रियोले और तोबिश के बिरी छोटा से हम वो गांव में छोटा से बड़ा हो रहे हैं अभी ले। और वहाँ पर ही बहुत जना लोग बहुत बड़ा आदमी बड़ा छोटा सभी लोग भोजपुरी बोले रंजा और हाँ ना केवल भोजपुरी पर अलग और भाषा भी बोले रंजा और जस्टी मेनली भोजपुरी हमने के दोस्त लोग के साथ बड़ा जन लोग के साथ भोजपुरी में चलेगा।
4: मतलब कि आप छोटा से भोजपुरी बोल रहे हो, आपके मातृभाषा है भोजपुरी।
5: जी छोटा से भोजपुरी बोल रहे हैं और हमके बहुत ही डिफिकल्ट रहल कि योली भाषा सीखे।
4: अच्छा जी। हमके बुझाला हमनी के जन उम्र के हमनी है जा हमने के बाद परिस्थिति बदल गई, लेकिन हमने के उम्र के हमने सब कोई के भाषा खास तौर पर गांव में भोजपुरी ही रहल, और जब स्कूल गई लीजा तब जाके हमें के

0: भोजपुरी हम नहीं समझते उतना क्रियोली भाषा, पर धीरे धीरे करके अभी सबको खुशी मिला के भाई भोजपुरी गीत गावे
1: जरूर कहे नहीं। तो अब हमने के बोला कि कैसे आप भोजपुरी भाषा से तो आपके इधर आपके मातृभाषा है, ये सिखावे की जरूरत नहीं रहा, ये आप बहुत अच्छा से जानेला और पसंद भी करेला। अब भोजपुरी गीत के लेके संगीत के क्षेत्र में भोजपुरी भाषा के लेके भोजपुरी गीत गावे के ये संगीत में कदम रखे के आपके कैसे प्रेरणा मिला? का आप अपन गीत अपने लिखेला कि कोई लिखेला?
0: जी हम अपन गीत अपने लिखेला और ना खरी अपन खातिर, और ढेर गीत बा हम लिखले हैं दूसर और चीज लोग खातिर गीत गावे रंजा। और हमार लिखला जिस दिन आने वो दो तीन बार कर ले बाद अलग वॉइस पे।
1: अच्छा जी। हाँ,
0: और जब मैं ऐसी करा वो लोग और चीज लोग के कि वो लोग नारा रंजा तो हम आगे नहीं थी। और एगो एगो एगो बड़ा भाई बा वो हमार बड़ा भाई और हमार बड़ा भाई के एगो दोस्त बा वो बहुत ही धन्यवाद कि हमरा आगे पुशे करलन और आज हम यहाँ पर आर्टिस्ट के रूप में जाना जाएगा।
1: तब भोजपुरी गीत जब आप गईला पहला हला कौन बरिस रहा 2008 आपके बोला?
0: 2008 में नया पहला एल्बम आ रहा इतना दिन, और इतना दिन में टाइटल सॉन्ग में बा इतना दिन के, और वही एल्बम में जलसा के रात बा।
1: हाँ जो बहुत मशहूर हो रहा। हाँ,
0: और 2008 से लेके अभी तक हाउ म्यूजिक वा हाउ स्टाइल वा अभी सब कोई खुशी रहेगा।
1: जरूर हमने ये वक्त जुड़ल है जा प्रोग्राम संस्कृति की बातें के साथ, और संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हमने ये बात कर रहे थे जा कुणाल हीरीलाल से, जो कि मॉरिशस के एगो जानल मानल कलाकार हवन और जो भोजपुरी में गीत लिखेलन और गावेलन एगो नवा पीढ़ी के आप कलाकार हवा। और हमने आपसे बातचीत के जरिए जाने चाहते जा कैसे आप भाषा के साथ प्रेरित होके और अपन भोजपुरी संस्कृति से प्रेरित होके आप गीत गैले हवा। ऐसा ढेर गीत बा कुणाल जी, जो आपने सब परिवार बुजुर्ग लोग के संगे बैठ के सुने, एगो पार्टी में वो गीत चली तक कोई तोहरा इशारा करी कि ये गीत बंद कर दा, एक ऐसा ऐसा बात बा जो नहीं अच्छा बा। लेकिन आपके गीत देखते है जा कि सकीला जा हमने परिवार के साथ सकीला जा सब कोई के साथ बैठ के सुने, वो चाहे रोमांटिक गीत हो चाहे वो देश के लेके हो कोई भी हो, आपके भाषा में एगो लिहाज बा एगो आदर भाव बा। तो ये जो हमने के संस्कृति के बात घर में आवेला जब जहाँ पर आप आदर सम्मान के बात आवेला व्यवहार के बात आवेला भाषा में एगो तहजीब रहेला, तोहर जब रोमांटिक गीत में भी जब छोकरी के बरत होता बरत हुआ तोहर बार तोहर बोली तोहर चेहरा, तो ये सब बात आपके मतलब कैसे सोचला कि चाहे ये सब रखे के चाहे ये जो दायरा बा ओके पार नहीं करे के?
0: देखा पहले तो भोजपुरी जुड़ल बा हमके बड़ा जन लोग से,
1: जरूर
0: चाचा चाची दादा दादी लोग से, अब ये आदर हुए से आवेला
1: जरूर।
0: अब जब एगो गीत लिखा तो कैसे बिना बिना वो लोग के सोचला नहीं सब एक ही एक ही जनराशों के खातिर गीत लिखे चाहना याद करे कि वो लोग बड़ा जन लोग हवन सा वो लोग वो सुनियन सा और जस्ती लोग वो सुनियन सा। हाँ, और इसे गते धीरे धीरे कि
1: और आपके भी बुझा ला कि ये मतलब एगो स्वीकारनीय बात है बात कर बा एगो पब्लिक स्फीयर में पब्लिक क्षेत्र में एगो गीत लिखत हवा तो ओकर में चाहे ला खाली बुजुर्ग के नहीं सोचा आपके भी एक घर में एगो छवि बा
0: जी। हाँ।
1: आपके एगो इमाज जैसे बोलीला सा तो आपके आप माने ला कि चाहे ना एगो रियासत भाव से कुछ लिखबा कुछ बोलबा तो चाहे बोले के
0: जी। हाँ ये आदर चाहना रखे के, और जाने ला भोजपुरी वो अपने अपने आप में ढेर बड़ा
1: जरूर
0: हम नहीं बचिया कहीं सा में वो अपने आप में ढेर बड़ा तब वो बड़ापन के चाहना आदर करे के आदर दे के
1: जरूर। हाँ। और हमने देखी ला जा कि आजकल ढेर कोई तुतु ममा करके बच्चा लन जा, और भोजपुरी भी हर एगो भाषा के तरह एकर एगो बहुत ज्यादा आदरणीय रूप बा और एकर एगो ऐसा मीठा रूप भी बा। लेकिन बोले लन जा जब भोजपुरी में कोई के कोनो बात बोलबा तो वो भी मन के हारी से छू जाला तो भोजपुरी के अलग रूप बा और आप

0: के गीत में हमने भोजपुरी के जन मिठास बा, भोजपुरी के जन सुंदरता बा, वो हमने के लौकेला। तो चला एगो छोटा सा विराम ले जा और आपके एगो गीत सुनब जा जो आजकल बहुत मशहूर होल बा, और फिर ये बातचीत के जारी रखब जा।
1: जी।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आपके एक बार फिर स्वागत बा। ई कार्यक्रम के प्रसारण यही बखत होता लाइव रेडियो मनोरंजन पर और साथ में हमने के एमबीसी के फेसबुक पर पेज पर भी आप सकत हो हमने के देखे।

0: आज हमने बात कर थे जा कैसे भोजपुरी गीत में हमने के संस्कृति झलकेला। और आज 18 मई एगो ऐतिहासिक दिन है, एगो ऐसा दिन जहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स डे मनाएला जा। म्यूजियम के आज के दौर में परिभाषा अलग अलग बा। म्यूजियम में एगो समय रहल जब खाली उस पुराना वस्तु रखल जात रहल जेके आप छुए के इजाज़त नहीं है, खाली दूर से चाहिए देखे के। लेकिन आज जब हमनी के दुनिया विरासत संस्कृति और भाषा के लेके नवा नवा कन्वेंशन तैयार कर ले बा, हुआं पर हमनी के जितना अमूर्त विरासत बा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उस सब म्यूजियम के अंतर्गत आवेला। और आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स डे जहाँ एक तरफ मनावत है जा, हुए पर हमने के संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हमने देखत है जा कैसे भोजपुरी गीत एगो माध्यम बा हमने के संस्कृति, हमने के भाषा, हमने के जो विरासत बा ओके प्रस्तुत करे के जनता तक। और हमने संगे एगो नवयुवक गायक हवन कुणाल हीरीलाल। कुणाल जी आपके एक बार फिर स्वागत बा।
1: धन्यवाद।
0: अभी हमने के बोला आपके मातृभाषा है भोजपुरी, पोंतुपिमो में आपके जन्म होल बा। और 2008 में आपके पहला एल्बम निकलल इतना दिन
1: जी।
0: पहला जो एल्बम रहल वो धरल एगो कसौटी है, वो शुरू करे खातिर आपके चाहे बहुत निवेश करे के, चाहे उस समय रही चाहे वो आपके जो जितना भी जोश जुनून बा उस सब ओकर में लगा देबा। और जे उ चलल तो आपके जीवन संवर गल, जे नहीं चलल तो हताश हो जाएबा। तो इतना दिन के बारे में हमने के बोला कैसे चलल 2008 में जब ई निकलल, और इतना दिन में कौन कौन विषय पर आप लिखला और गईला?
1: पहला था इतना दिन लिखे के ढेर समय नहीं लगा, काहे कि जितना कोर में टॉपिक बा सब जुड़ल बा एक्चुअलिटीज पर,
0: मतलब कि रोजाना जीवन से जुड़ल बा।
1: पहले तो गीत बा, पहला तो टाइटल सॉन्ग हुए बा इतना दिन संगे रहली सा, इतना दिन संगे घूमली सा, पर हम के काहे आज छोड़ गए ले। लड़का पर गीत बा, हमार दोस्त पर गीत बा, दोस्त पर गीत बा काहे हमार दोस्त लोग पिसिया होन सा लामिया दम्बूरे रहेगा सा, तो पिसिया पर गीत बा। और गीत बा जे लोग काम करे लन जा, माँ पिताजी काम करे लन जा, और कैसे आगे बढ़े लन सा, कैसे दुख होला, दुख के बाद कैसे सुखो मिलेला, है पर गीत बा। और गीत बा एगो लड़की के देख के दीवाना हो गई ली, और ना भूलते हुए जलसा के रात बा वो एल्बम में।
0: अच्छा, जलसा के रात बा जो काफ़ी मशहूर हो गए
1: जी। हाँ।
0: और जब बोलत हवा अभी देख ली जाओ हर एगो विषय पर लिखले हुआ, माँ बाप से जुड़ल, लड़का से जुड़ल, एगो छोकरी के देख के दीवाना हो गई ली, और फिर इतना दिन हमर संगे रहले काहे छोड़ दे ले, ये भी रोमांटिक गाना भी गाना ही हुई। और ये सब आप अपन जीवन से जो जो परिस्थिति उभरल ओकर पर आधार ओके आधार बना के आप ये गीत लिखला
1: जी।
0: और मछी मरवा पर लिखला का है कि तो पीवा तो समुद्र के सामने में रह रहा।
1: और जो लिखित में जो जितना दोस्त लोग के हम संगे घूमल बड़ा हो रही वो में से दोस्त लोग मछुआरा अनुसार क्लिपो में बा कि एक एक जना पूजा करता जता अपन मछी मारे सकते कुछ कुछ करता अपन अपन सब बस्ता वो समेटा था जाए के लापिस करे जाए के,
0: मतलब लापिस करे जाए से आगे भी एक कोनो पूजा कोनो विधि करे ना जाए
1: ढेर कोई। हाँ, पहले तो जैसे बातों हुए यहाँ जाए बा तो पानी में घुस बा तो पानी हुए के पानी से अरग गिरावे से। हाँ, अब ढेर कोई करे ला और ढेर कोई हवा है
0: आप पर निर्भर
1: जी। हाँ
0: जी। और जब आप ये सब गीत लिखला तो जनता कैसे एकर स्वागत करलक, आपके एल्बम के सफलता के बारे में थोड़ा बोला। पहला एल्बम
1: हाँ चलल, पर उतना नहीं चलल बस कि ढेर कोई नहीं जानता कि एल्बम पब्लिसिटी है नहीं होने, पर धन्यवाद बहुते वही समय में MBC ऑर्गेनाइज करत हल विलेज में ढेर प्रोग्राम, तब हाउ में से अवसे कर करके तब आगे आईनी सा MBCO के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमार कार्य में उकर
0: सहयोग
1: बा,
0: आपके मंच मिलल अपन जन गीत बा के प्रस्तुत करे के
1: जी। हाँ।
0: और फिर उकर बाद कैसे आपके हिम्मत नहीं टूटल, मतलब बोला उतना सफल नहीं होल फिर भी कैसे आपके हिम्मत बढ़ल कि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाए बा
1: जी। और थोड़ा थोड़ा

करके सिंगल निकली, एल्बम नहीं, एक एक हर बरिस दो गीत सिंगल में, फिर वो भी वो सब गीतवन एमबीसी के द्वारा आगे बढ़ल और रेडियो के द्वारा आगे बढ़ल और बहुत लोग जानेला, कंसर्ट करीला, कंसर्ट ना केवल मॉरिशस में अब्रोड भी।

0: लिखेला और गावेला, तो इस सलाह मशवरा में कौन कौन बात के ख्याल रखेला?
1: निकल चला पहला था जैसे कंपोजिशन में उकर बॉडी उकर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है सब चाह रहे के ए, गीतों में
0: भी।
1: हाँ गीतों में चाहला एगो संदेश रहे के कि कौन सी पर लिखा हुआ कहानी कौन सी पर हुआ सकबा देखा सकबा आगे जो चीज हो सोच के लिखे पर नहीं सकबा झूठ लिखे
0: हाँ
1: हाई एगो एगो हम ढेर ढेर ढेर कुछ बोली रहा बतवा कि फासिल बा फ्यूचर लिखे के सोच के फ्यूचर लिखे के पर झूठ
0: जो
1: बीत गलवा हाँ वो सुबह लिखे मैं झूठ नहीं सुबह लिखे जो चीज फिक्चिव बा एम पे तनी सुन डिफिकल्ट था लिखे के
0: मतलब कि जो बात बीत गलवा ओके दूसर तरीका से नहीं सक बा प्रस्तुत करे
1: हाँ, हाँ।
0: और भविष्य के बारे में कैसे झूठ के बोला था कैसे
1: देखा नेक्स्ट कब सा झूठ कैसे बोला जा रहा कि जो चीज नहीं हो बा जो चीज नहीं हो बा और नहीं सकी हुई इम्पोसिबल बा हुई के तो वो कैसे उकरा आगे अनबा
0: जरूर हाँ। मतलब वास्तविकता पर आधारित आपके ये सब गीत बा जो बात घटना जो घटल बा और जो दिशा में जाते जा जैसे फिर से हुई हो लबा वैसे ही उही निर्देश में आप उही डायरेक्शन में आप लिखेला तो अभी जब बोलत हवा सच और झूठ तो अभी आपको कैसे बुझाता नौजवान लोग के जो रुचि बा भोजपुरी गीत के लेके भोजपुरी संगीत और भोजपुरी भाषा के लेके थोड़ा कैसे बुझाता कैसे कैसे नजर आवता इस स्थिति
1: पहला तो कितना आर्टिस्ट बा भोजपुरी के सब कोई अपन अपन तरीका से भोजपुरी आगे बढ़ावता और जैव कहूँ पर कंसर्ट में कोनो
0: शादी में
1: तो देखिए कितना कोई नाचेला
0: भोजपुरी गीत
1: में बस की बॉलीवुड बो गीत बा में भोजपुरी गीत में कैसे सब कोई नाचेला तो वो जो लोग नाचेला वो लोग क्या होन सा नौजवान लोग
0: हाँ।
1: नौजवान लोग हाँ बा चाचा चाची लोग में नौजवान लोग भी बा जे लोग खुशी रहन सा भोजपुरी सुने के तनी सुन शर्मालन सा तनी सुन हिचकिचालन सा बात करे के पर हाँ ढेर कोई समझेला अयो जस्ती ऐप होता बा घरे ढेर कोई चाहे बच्चा या नहीं मैं हम एगो एगो एगो एगो छोटा सुन रिक्वेस्ट करती कि घरे बच्चा हुआ चाहे लैकवा बतियाए नहीं मैं उस सुनता ओकरा चेहरा समझी के
0: और जहां ओके जरूरत पड़ जाए सके एक दो शब्द भी बोल
1: जी वो अभी नहीं बोली अभी चकला शर्माए जब तू नहीं रहा तो तुर पीछे वो
0: बोली
1: या कोई से कुछ बोली हूँ हमार माँ बा हम नहीं यहाँ लड़का लोग ढेर शर्मालन से बोल जाए जब हम नहीं जा सा तो एक दो बोली बोले लन सा है जस्ट यहाँ पोता बा
0: और ये जब हम समाज में रही ला जा देख बा बस में ये नज़ारा ढेर लोकल बा एगो दादी बीस में चढ़ियन वो जो कंडक्टर बा या ड्राइवर बा वो लोग नहीं बोले रहन सही भाषा लेकिन जब वो दादी वो नानी या वो दादा भोजपुरी में ही बोला था तब और किरियोल में उन्हें सकता आगे पुन करे तो उन लोग के परे लाइक दो गो शब्द बोले कि भोजपुरी में तब जाके जनबा कि ये लोग जाने लन सा ये लोग सकियन सा थोड़ा जेफो करके एगो कोशिश करे लन जा बोले के और शायद यही बात के तरफ आप इशारा करता हुआ कि भले ही वो लड़का नहीं बोली लेकिन आप बोलते रहा नहीं सक बचाने कब ओकर मुंह से ई
1: बोली
0: निकली कहाँ पर इस्तेमाल करी
1: और यही विचार से लिखा हमारे कई से प्रोजेक्ट बा कि हम लिखिला और हम ये सोचिला कि जितना लिखब और तुहर ड्रोवा में से निकलब भगवान और दे
0: जी
1: और हमार जस्ती अच्छा प्रोजेक्ट बा कि जेकरा मन बा गीत गाए के उसे कि हमसे आपोशे हुई एनी टाइम फेसबुक में बा पेज फेसबुक में हमके मिली कहूँ पर ही हम पर मर रही रहा मन बा गीत गाए के हमने बोले हम सब चीज़ जानी रहा मैं सकब गीत लिखे सको को गाइड करे ऐसे गाए के
0: जरूर
1: और नौजवानों के शतु
0: जरूर और आज हमने संगे हवन कुणाल हीरीलाल एगो नवा पीढ़ी के गायक जे हमने के बोलत हवन कैसे वो प्रेरित होलन अपन जोन परिस्थिति बा घर के परिस्थिति अपन जोन इर्द गिर्द के परिस्थिति बा ओकर से प्रेरणा लेके गीत लिखे के शुरू करलन गीत गैलन और आज ई मंच पर उ बोलत हवन कि उ मदद करे खातिर भी तैयार हवन जे आप गीत गावे चाहबा तसे केन तोहरा ओ एगो गाइडेंस एगो निर्देश देवे सिकन तौर खातिर गीत भी लिखे और भोजपुरी भाषा में देखते जा आप बहुत सरलता के साथ आप बोले ला लिखे ला

0: लिखे के जो हुनर बा बोले सब कोई सकेला, लेकिन भोजपुरी में लिखे के अच्छा से अच्छा बात लिखे के गुण तोहर में कहाँ से आए? ई तो सुन सुन के नहीं सकबा, ई तो चाहना रह के।
1: पहला चीज तो हम कबो सीखल नहीं है ना, हम म्यूजिशियन हैं, पर भगवान ई दिले बा तो ई खातिर हम खुशी रहा पौताज करके। पहला गीत हमार साथी बाबू गीत गावेलन, कृष्णमोनिक सबको जाने ला, सास बहू और ढेर गीत बा,
0: सास बहू में होकर बाल लड़ाई।
1: धन्यवाद ओकरा कि ऊ हमरा बोलक तू सकबे करी एगो गीत लिखा।
0: एगो कलाकार दूसर कलाकार के पहचाने ला, ऊ तो हर में कलाकार के दिख
1: ला। ऊ सकेला कुछ लोकल हो हमर पर, और वो लोकल में काम करती निशा, तब पहला गीत वहाँ पर लिख ली, और ओकर बाद धीरे धीरे धीरे धीरे।
0: कुणाल जी, ई बखत हमनी के जितना श्रोता हवन जा, जितना फेसबुक पर देखत हवन जा, आपके आपके आवाज़ सुने चाहत हुए जा लाइव, कैसे सा कब्जा हमने संगे एगो कलाकार बा और दुशब्द नहीं गावे, जितना गीत लिखले हवा ओकर में से आपके जन सबसे मन पसंद बा, जन लिखले हवा या फिर जन गैले हवा ओकर में से कौन जन आपके सबसे मन पसंद बा, एगो टुकड़ा हमने के सुने बा अभी।
1: जी जो हमार जस्सी भिरी बा वो हमार दोस्त कहे हमनी बड़ा होके छोटा से संगे बड़ा हो लीसा, और एगो गीत लिखे के हमार हमार दोस्त लोग के हमार जहाँ पर हम रही ला, तो वो जस्सी हमार भिरी बा। हमार दोस्त बा एगो मच्छी मारेला, घर में उठेला उही पहला, भगवान से प्रार्थना करेला,

0: परिवार के जीवन लेके जाए खातिर परियों के काम करके जीवन आसान नहीं बा तो परियों के काम करके।
1: ये गीत था मच्छी मारे पर
0: जी,
1: और एक और टाइटल का है
0: हमर दोस्त।
1: और जैसे अभी देख लीजा ये गीत में परिवार के बाद बा, दिन अच्छा से बीती एक खातिर प्रार्थना करे के बाद बा, और जितना हमने के संस्कृति में हमने सीखी ला जा आप सब एगो गीत में पिरो के एगो दोस्त खातिर ओकर नाम पर ये गीत लिखला। ये हमने के जो कलाकार होवन एक आवाज में अभी जो लाइव गाना सुनला इनकर आवाज़ में एगो दूसर इनकर गाना सुनब जा और थोड़े ही देर में फिर मिलब जा और ई बातचीत के जारी रखब जा।

0: संस्कृति की बातें,
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। ई कार्यक्रम के प्रसारण MBC और अप्रवासी घाट ट्रस्ट वन के सहयोग से होवेला। और आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हमने एगो युवा कलाकार कुणाल हिरीलाल से बातचीत कर रहे जा। अभी आप उनकर एगो बहुत मन के छुए होला गीत गैला, जैके सुन के वातावरण काफ़ी उदास हो गल। कुणाल जी, ई गीत बहुत सुंदर गीत रहल, जो बहुत कमती एकर में संगीत, बहुत कमती म्यूजिक बा, बहुत कमती इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बा, आवाज़ के जादू जस्ती एकर में नज़र आवता और वो भाव भी बहुत अच्छा से सामने चला। कब ई गीत गैला, मतलब कोई के याद में गैला, कैसे ई गीत एकर बारे में थोड़ा बोलो।
2: दे मिल जिस में एगो कंसर्ट पद विमा में आरुकाजों कैंडल लाइट सेरेमनी ए तब गीत लिखले रनी हम। और
1: कौन बात की कैंडल लाइट?
2: जो लोग ड्रग्स लेके गुजर गए वहाँ जा ता लोग के एगो कैंडल लाइट सेरेमनी होला,
1: मतलब एगो श्रद्धांजलि समारोह जो लोग ड्रग्स के शिकार हो गए रहन जा।
2: और जो नहीं होन सर यहाँ पर ही ता, और देखा पिताजी रलन संगे, फिर हमने के दिन थोड़ा जैसे रहल आगे बढ़ल, निमन निमन दिन आवे लगल, तब पिताजी गुजर गेलन, तो ओकरो याद में ई गीत रहल। और कंसर्ट में जब गई नहीं तो सब सभी कोई बहुत ढेर पे पसंद कर रहा गीतवा, तबे यही विचार आ कि यही गाना के छाना नया रूप देखे, नया कलर देखे, फिर ऐसे को बारात बनेनी सा। और बहुत कोई हाई गीतवा खुशी रहेला अभी ले।
1: हाँ, कहे कि ये गीत में घर के बाद बा, घर के साथ दिया जरावे के बाद बा, दिया बर ले है दुख के दिन के बाद बा, लड़का और लड़का के भी जन भावना बा, शायद आपके पिताजी जब गुजर गए तो लड़का के जन भावना बा
2: जी। और अभी ले आओ दुखवा बा, सागवा बा कि यहाँ रहता अच्छा रहत।
1: कहे कि जब हमने के पिताजी लोग के समय रहा, गरीबी के समय रहा,

0: घर भी घर के जन रूप रहल देखत है जाके बदल ले आलबा उ बकत घर कुछ और रहल घर छोटा रहल गरीबी के हालात में लेकिन जन आपसी संबंध रहल वो वही घर बनावत रहल
1: जी।
0: और आज देखत है जाके अब समय गुजर ले जाता तो परिस्थिति भी बदल ले जाता
1: जी। आशा नहीं रहल उ दिन तुल के घर में एक गो आशा में तीन गो लड़का माँ बाप रह के पर सैक्रिफिस से बहुत बहुत हम इवंश कहानी जो सुनत हुई हम माँ मैं मंच के द्वारा बोलती हूँ करे मैसी बहुत ही आज तीन गो लड़का और तीन गो लड़का के देख के बड़ा कर लन हम 10 बरिश के रहनी या 8 बरिश के रहनी सीजाम कर रहनी तो पिताजी गुजर गए हमारे रिजल्टावे नहीं मिला उसका देख के और बदल ई कहाँ फंसे हुई
0: और आज आप उनका नाम रोशन
1: और सभी और मैं हमारे भाई बाबू पेंटर वन और प्रोफेसर वन फ्रेंच टीचर वन बहन बाबू फ्रेंच वह टीचर वन और हम हई सेल्फ एम्प्लॉयड अपन बिजनेस करीला हम पुलिस डिपार्टमेंट में रहनी रिटायर के बाद अपन बिजनेस करीला और आज सभी कोई तनी तनी अपन अपन को नाम है ऐसा और निमन से ऐसा माता जी के ख्याल रखीला सर माता जी अभी ले हमने ख्याल रखेला अभी हम ये खा के पकावेला हमने के लड़का लोग के दिखेला बतियाला सिखावेला बहुत बहुत धन्यवाद माँ।
0: जरूर तो जैसे सुना था इस संस्कृति की बातें कार्यक्रम में हमने संस्कृति के साथ साथ जो भी बात जुड़ल बात चाहे वो मान सम्मान रही आचार व्यवहार के रूप में रही भाषा के रूप में रही विरासत के रूप में रही इस सब बात पर हमने ध्यान दे ला जा और आज देखते है जा कैसे अपन परिवार से प्रेरित होके एगो गरीब परिवार आगे के समय में तो हमने के सब पूर्वज लोग गरीबी रलन सा इ देश के निर्माण धीरे धीरे होलबा और उस सब बात के ख्याल रखते हुए पूर्वज लोग के श्रद्धांजलि देते हुए उन लोग के संस्कार पर बनल ई समाज के ख्याल रखते हुए कैसे भोजपुरी में गीत लिखा था भोजपुरी में गीत गवाता और वो भी ऐसा सुंदर सुंदर गीत सुंदर आवाज़ में कठिन परिस्थिति के सामना करते हुए इस सब बात पर आज हमने ध्यान देवत है जा। आज के हमने के कलाकार हवन युवा कलाकार कुणाल हीरीलाल जिनकर गीत आप बहुत पसंद करेला और भोजपुरी तर का प्रोग्राम में हमने सुनते रहेला जा आपके गीत के मांग ऐते रहेला आपके बहुत बहुत बधाई। तो कुणाल जी ई एकर से आगे कि हम थोड़ा आगे बढ़ जा आपके आवाज़ सुंदर आवाज़ में एगो और गीत सुनी जा जहाँ पर हमने के जो श्रोता लोग आपसे उतना परिचित नहीं हुए जा आपके गीत उतना नहीं सुन हुए जा तो आज सुन के जन जन जा कैसे संस्कृति और संस्कार के बाद आपके गीत में झलकेला
1: एगो गीत बा तू हमेशा कर ले हवे तोर लैका खातिर कबो गिरे नहीं देवेले उतराव चढ़ाव में हमेशा कर ले हवे जमे तोर परिवार गरीबी कबो नहीं देखी तोर खातिर बहुते समय नहीं बा हर रोज के जाले आवे के बेरा नहीं हाँ अकेले करत हवे तोर लैका खातिर बिगड़ल जीव में अभी ले करत हवे कुछ कर बे जन लिखल बा है जा होवे के बा कुछ ना।

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम के लगभग अंत तक हमने पहुँचा था ऐसा और हमने संगे हवन आज कुणाल हीरीलाल जे हमने के अपन गीत के बारे में बतावत हवन कैसे उनकर गीत में संस्कृति भाषा और पारिवारिक परिस्थिति सामाजिक परिस्थिति शामिल बा और अभी सुन लीजा मॉरिशस एगो सुंदर देश
2: जी
1: मॉरिशस एगो सुंदर देश ही है कहे कि हमने के संस्कृति एगो मिला जुला संस्कृति है अलग अलग संस्कृति बा और आदर भाव के साथ ही हमने जैसे आगे बढ़िला जा ओकरे में हमने के देश के भलाई शोभा और सुंदरता बा तो हमने के ये बोला कि जब आप 2008 से अपन करियर शुरू करला संगीत के क्षेत्र में

0: तब से लेके अभी कितना आपके गीत बा और कैसे आगे बढ़त हुआ आपके, कैसे बुझाता आपके भावी जन परियोजना में कैसे चली?
1: पहले तो हमारे पहला एल्बम रहल इतना दिन ओकर में 8 गो गीत बा और ओकर बाद 2008 से लेके अभी तक हर बरिस दू दू गो एगो एगो गीत ऐते ही रहला। और देखा हर बरिस एगो एल्बम ने सुबह निकाले जुन जुन पहलावा बा वही अभी ले सुफले कर रहा था, अभी ले आदमी जनते ही बाओ के देख वे करते बा। अब जब एगो दूसरा नया निकलवा तो हाउ जुन औसवा बा ओकरा परी नॉर्मल तनि सुन दो मैथ रह के। और जैसे कि धीरे धीरे करके था हो गल इसके लगो 20 या जस्ती गीत हो गई।
0: अब आपके साथ जब एगो एल्बम निकाला था एगो गीत के रिकॉर्डिंग करत हुआ तो आपके एगो टीम हुई, आप अकेले में तो ये सब काम नहीं होला, अपन टीम के बारे में थोड़ा बोलो।
1: जी पहला हम गीत लिखिला ओकर में मेलोडी हम डालिला पर म्यूजिक बनाई के चाहना एगो एगो टीम
0: जरूर।
1: और म्यूजिक बनाई के जैसे कि हमनी मॉरिशस में मल्टी कल्चरल आइलैंड है सा, जितना कोई हमनी के घरों के भीड़ी क्रियोल जाति के बा, मुस्लिम बा, तमिल बा, सभी लोग जुड़ी जुड़ के जिला सा
0: जरूर।
1: और हाँ पोर्टो पीमा में क्रियोल वो लोग भोजपुरी बोलेगा और समझे ना सर। हाँ और म्यूजिशियन हमारे म्यूजिशियन सब क्रियोली हवन जा, सब दोस्त लोग बटावलन सा हाथ और हम गीत लिख के वो लोग के बोलीला कुछ ही खोते हैं बोले के गीतवा में, फिर वो लोग अपन एक्सपीरियंस से अपन अपन जान डाले लन सो गीत में म्यूजिक द्वारा।
0: मतलब कि हमने के देश की जो बहु संस्कृति बा, बहु सांस्कृतिक पहलू बा, वो आपके गीत सुन बता वो नजर आवेला
1: जी।
0: आपके बोली, आपके विचार और फिर म्यूजिक जो की अन्य संस्कृति अन्य भाषा भाषी के मित्र लोग बैठ के कलाकार लोग कहीं बोलो जरा कलाकार में कोनो मजहब कोनो जाति नहीं है, कलाकार एगो दूसरा समुदाय है, एगो अलग समुदाय है और एकर में हर एगो कौम के व्यक्ति सकी रहे और ऐसन ही एगो टीम बा आपके जो उनकी आपके इस सब सुंदर भोजपुरी गीत के सफलता के पीछे है वंसा।
1: और जस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमर गीत चाहे बोली पुराना हुई पर वो लोग जान डाले सोकर में कैसे जब नया
0: आपके सब गीत में बहुत सुंदर सुंदर संदेश बा लेकिन एगो नयापन बा आपके धुन में, आपके लय में, आपके सुर में एगो नवा अंदाज बा और यही आपके सफलता शायद ओकर कारण है। और जब हमने नौजवान के बात कर रहे थे जा कैसे नौजवान के आकर्षित कर अपन गीत संगीत से अपन भाषा से तो चाहे उन लोग के साथ चले के और ये नयापन के साथ चले के।
1: जी हाँ देखा जैसी ऐप हो तो अब जब नए बोलते हैं बुराई कोई के अब जब समय तरी सुन लावा बिगड़ गलवा अब तू ही खुशबा गीत गाए के हम नहीं कि नहीं बोलते हैं कि हम ढेर जानी ला में जैसी इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमने कब गाई दूसर कोई से गवाई ला
0: जरूर।
1: हाँ या दूसर कोई से कोऑपरेट करके एगो एगो सिंगल दू जना गाविया सा जमें ओकर मिठास रही ओकर न्यू
0: ओकर क्वालिटी ओकर किस्म अच्छा हाँ, रही
1: अच्छा रही। और जिकर यहाँ नया नया गीतो बा तला जवान ओकर से गवावा दूसर कोई से गवावा नहीं इसको तू करे तो दूसर कोई से एगो चीज कर कि लड़कों लोग वो खुशी रहने से आ गया
0: जरूर। मतलब आप बोलत हवा कि ये एगो ऐसा क्षेत्र है जहाँ चाहे आपसी सहयोग जहाँ देखत हवा तोहरा चाहे एक कदम पीछे हट के दूसर के मौका देवे के दूसर के साथ चाहे आपके तो आपके नहीं चाहे हिचकिचाए के आपको कदम चाहे उठाए के।
1: एग्जाम्पल ले रहा सब बॉलीवुड में सब गीत तो सोनू निगम जी ने गावेला
0: जरूर,
1: सब गीत तो आतिफ असलम ने गावेला
0: जरूर,
1: में जो लोग लिखेला वो लोग एक प्लास्बा जो लोग गावे ला लोग के प्लासबा जो लोग म्यूजिक बजावे ला लोग के प्लासबा सब कोई अपन अपन काम में माहिर रहन सा। अब तू ही गीतवा लिखब तू ही गईब तू ही म्यूजिक बनेब तो उसम फ्लाइंग कलर जो पे जीव सिल्वा मिल गए।
0: मतलब कि अभी कुणाल जी बोलत हवन कि एगो जब टीम वर्क के काम रहेला जहाँ पर ए विभिन्न क्षेत्र के एक्सपर्ट्स लोग हवन जा कोई लिखे जाने ला कोई के आवाज़ में वो मिठास बा जेकर आवाज़ ई जो लिरिक्स

0: बा सकी ओके जान देवे और फिर कोई और बा जे ई लिरिक्स और ई आवाज में एगो और मिठास सकी आने ओकर में एगो और स्वाद सकी आने तो चाहे इस सब कोई के मिल के ई काम करे के कहे कि एक जना से एगो काम नहीं होवेला और हर हमेशा एक ही जना नहीं सकी सब काम करते रहे आपके चाहे जाने के कब एक कदम पीछे हट के कब फिर एक कदम आगे बढ़ेगे जी। और अभी संस्कृति की बात है कार्यक्रम के अंतर्गत जिसे देखला हमने ध्यान दे लीजा कैसे आपके गीत में संस्कार संस्कृति और लिहाज रियासत भाव के जो भावना बा ये सब कैसे एक ही गो प्लेटफॉर्म में आवेला एक ही गो एगो गीत के जरिए आप एगो पूरा संस्कृति प्रस्तुत करत हुआ आपके घर के बात उकर में बा आपके जो नज़र के सामने समुंदर में गुजरता फिर जो सुखद और दुखद अनुभव बा ये सब आप पीरो के अपन गीत में प्रस्तुत करेला और आप ये भी आशा रखत हुआ कि आवे होला पीढ़ी भी एके आगे बढ़े अंजा। तो आखिरी में हमने के कार्यक्रम के समाप्ति में 2-3 मिनट रह गल बा 2-3 मिनट में आपका चाहत हुआ जीवन से इस क्षेत्र से आपकी कौन भावी परियोजना बा और एक बारे में थोड़ा बोला
1: इवरिश थोड़ा अलग हो के बा एगो बड़ा प्रोजेक्ट आवता आगे में और न केवल हम ई बार भी एगो टीम बा और टीम के साथ और गायक दोस्त लोग बा जन जुड़ल हम जा एगो बड़ा कंसर्ट करे को रहती सा और सितंबर महीना तक सकेला रियलाइजेबल हुई और ना भूलिया आई के बड़ा मंच से आई के और फिर से फेसबुक या सभी मीडिया में पब्लिसिटी रही।
0: अच्छा।
1: और आशा करते हैं कि सभी लोग जो लोग सुनत बन जा देखत बन जा हमने के संगे अयन सा उदिन जलसा करे
0: जरूर। और कुणाल जी देखते है जा कि आप ये बात पर विश्वास रखेला कि कदम चाहे धीरे धीरे बढ़ाए के लेकिन जरूर आगे बढ़े के और ये बात पर आप काबुल जब कि ढेर आप मतलब रश नहीं करला कि जस्ती से जस्ती गीत गावे के थोड़े गावत हवा बट हवा एक बरिस में एगो गावेला कम से कम कंसर्ट भी एक दुगो करत हुई बा लेकिन आप नियमित रूप से इस क्षेत्र में अपन कदम जमेले हवा और आगे के परियोजना के बारे में भी काफी आशावादी हुआ।
1: जी देखा सब कोई बोला ना जैसे हाली जब तक कस के गिर धीरे धीरे पर हाँ श्यूली बेस्ट थिंग्स चाहना रह के और हमने फिल्म देखिला सा और फिल्म देखिला सा और वो फिल्म में हमने अपने आप के पाईला सा
0: जरूर
1: आमिर खान जी बा एक बरिश में 2-3 बरिश में एगो फिल्म करेलन पर एगो जो बेस्ट करेलन
0: हिट
1: हाँ वही वही चला बोले के ओकरे ही देख देख के बड़ा हो जा और सीखत है सा
0: जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आज आप अपन कीमती समय निकाल के ई मंच पर आइला और अपन अनुभव बांटला और हमने आशा कर थे जा कि आपके अनुभव से आपके गीत से हमने के सुने हो रहा लोग भी प्रेरित हो जा वो चाहे कोनो भी क्षेत्र रही तो आपके बहुत धन्यवाद और हमने के देखे और सुने होला श्रोता और दर्शक के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संस्कृति की बातें कार्यक्रम तक हमके आज्ञा दा धन्यवाद नमस्ते।
2: संस्कृति की बातें

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अभी उदय से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। दोपहर के 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। देश के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अप्रैल 2026 के अंत तक 463.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं, जो एक वर्ष में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की वृद्धि दर्शाती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने आयात स्तर को मापने की दिशा में एक नई पद्धति भी शुरू की है, जिसमें 2 संकेतों का उपयोग किया जाएगा ताकि विदेशी मुद्रा की स्थिति और देश की आर्थिक मजबूती को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सके। मूर्ति नागालिंगम की मौत की खबर कल एक सदमे की तरह सामने आई। कला की दुनिया में कई लोग इसे बहुत ही दुखद नुकसान बता रहे हैं। मूर्ति नागालिंगम उन कलाकारों में से एक थे जो साझा करने की भावना और अतुलनीय विनम्रता से प्रेरित थे। इस वर्ष जुलाई महीने में आयोजित होने वाला सालों दू में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा, क्योंकि इस महान कलात्मक आयोजन यानी सालों दू में की स्थापना उन्होंने ही की थी। कोंटोरेल में कल पेश आई घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। कल एक फिटनेस ट्रक को लेकर 2 समूहों के बीच झड़पें हुई। प्रारंभिक जानकारियों के अनुसार पैदल चलने वालों के लिए इस ट्रक पर कुछ लोग क्वाड बाइक्स चला रहे थे, तभी ये तनाव पैदा हुआ जो गंभीर होता गया, जहां 2 वाहनों में आग लगा दी गई और गोलीबारी भी जारी हुई। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला हुआ। मध्य पूर्व में तनाव के बीच यूएई में इजरायली की मौजूदगी के दौरान ये हमला हुआ। संयुक्त अरब अमीरात ने इसे आतंकवादी हमला बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में फैल रही इबोला वायरस बीमारी की महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया, क्योंकि वर्तमान में फैल रहे इस वायरेंट के लिए न तो कोई वैक्सीन उपलब्ध है और न ही कोई उपचार। इबोला एक बहुत ही संक्रामक बुखार उत्पन्न करता है। पिछले 50 सालों में इस प्रकार के खतरनाक वायरस ने अफ्रीका में 15,000 से अधिक लोगों की जान ली। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड रियांबेल सुरीनाम में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री नवरतम ईरा, जिन्हें सब लोग नान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड रियांबेल सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM नंबर 12 एवेन्यू लासोस पाल्मा कैट्रोबोन में 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सोनिया पैदाशी नाम इटू, और जिन्हें सब लोग आजी गुनो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 एवेन्यू लासोस पाल्मा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल

तो आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगों के स्वागत बाटे, प्रणाम नमस्ते सबको के लेंदी के दिन है। और आज की चर्चा कार्यक्रम हमेशा हमने बात करी लाजा खेती बाड़ी के बारे में और पशुपालन। जी हाँ, आज विशेषकर हमने पशुपालन पर बतियाब जा और जो बकरी के ओकर पालन पोषण होवेला, कैसे होवेला, कौन कौन जो खितिया चाहेला ओकर पशुपालन में, एकर पर हमने सब चर्चा करे हो लब जा। तो जितना जना हमने के देखा था लाइव हवा जा रेडियो पर, टीवी पर, फेसबुक पर, और कुछ पूछे के रही हबिये से थोड़ा नंबर दे दे ला जा 402-84-4-0-8-0-8-5। तो ई पर चर्चा करे होला हमने संगे हवन जा

ला कैसे होवेला, कौन कौन जन कृत्या चाहेला ओकर पशुपालन में, एकर पर हमनी सब चर्चा करे हो लब जा। तो जितना जना हमनी के देखत हवा लाइव हवा जा रेडियो पर, टीवी पर, फेसबुक पर, और कुछ पूछे के रही हबिये से थोड़ा नंबर दे दे लाए जा 402-84-85-4028-85। तो ई पर चर्चा करे होला हमनी संगे हवन जा।

0: रेडियो पर, टीवी पर, फेसबुक पर, और कुछ पूछे के रही हबिये से थोड़ा नंबर दे दे लाइजा 402-84-85 402-80-85। तो ये पर चर्चा करे होला हमने संगे हवन जफा
1: 24,000 बकरी हमारे देश में है।
0: मानी की जैसे कि बोला था हुआ गायत्री जी कि मोरिस में लगभग 5 जन पिछला जन बरिस हमने देखा था जा एगो बढ़ावा होल बाटे बकरी के पालन में, और कितना ब्रीडर्स बाटे 1760 और 24,000 से जस्ती जन हमने लगे बकरी बा। तो ये जो अभी जैसे बोला था हुआ ये अच्छा बात है कि कमती बा को पागे कर बात है।
1: हाँ, तो बढ़ावा है इस के उत्पादन में
0: जी।
1: क्योंकि हमारे देश में बकरी के मांस की मांग हमेशा बनी रहती है, और अब अगर फूड सिक्योरिटी पर हम बात करेंगे तो इसके प्रोडक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है, तो द रेस्ट लाइक हमें इंपोर्ट करना पड़ता है।
0: अच्छा, हाँ, हाँ। 24,000 बाटे है जा परी हमने लगे मानी की जो बकरी बाटे, फिर भी मंगावे है चाहेला। हाँ जी, तो हमने के बतावा जब है जा परी पोल्ट्री बाटे अंडा के भी प्रोजेक्शन सब होला, तो वो जस्ती बा शिफवा अंडा के प्रोजेक्शन से मुर्गी सब से के कमती बा।
1: तो अगर हम पशुपालन के में के हिसाब से बात करेंगे तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हम सेल्फ सफिशिएंट है
0: जी।
1: हाँ, मीट पर भी और एग्स में भी। हाँ, लेकिन दूसरे जो एनिमल प्रोडक्ट्स है या लाइव एनिमल्स, इससे बहुत कमती प्रोडक्शन है मॉरिशस में।
0: अच्छा, एगो एगो एगो चीज आवेला दिमाग में जब बकरी की बात हमने करी रासा, तो भर्ती जब हमने जब नया साल आवेला, नया बरिस आवेला, लोग का खांसी सब खालन सा, तभी ओकर प्रदूषण के बढ़ावा होला के भर्ती बरिस कैसे होला?
1: भरते बरिस में इसके उत्पादन है, पर उसके मार्केटिंग ऐसा है कि जब फेस्टिविटीज होती है, एंड ऑफ ईयर फेस्टिविटीज, तो
0: उकर मांग बढ़ जाला।
1: मांग है और मार्केटिंग भी अच्छे से होती है।
0: अच्छा, तो जैसे बोला था वह गायत्री जी जो बकरी बाती है जब परी बा पर मंगावल जाला, तो कौन कौन देश से बकरी मंगावल जाला?
1: ज़्यादातर न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इन देशों से फ्रोजन मीट के इम्पोर्टेशन होती है।
0: अच्छा, तो हमने मांग कर अब जाके जितना जना हमने के देखा था वन सुना था वन, अब ये लाइन खुलल बाटे कोनो प्रश्न बाटे 402-84-85 402-80-85 पर हमने के सक बजा फोन करे, और वो हमने के दो गो मेहमान हवन जा गायत्री जी बिसेसर हवन और श्रीमान रेखानंद विदेशी। तो हमने बात कर रहे थे जा जो बकरी, तो गाय के हमने जानी ला जा जो अस्तबल उस सब बाते, बकरी आगे ढेर जाना अपन आंगन में पाछे उस सब एगो टोल से जो चीज बाती जो नस्तबल उस सब उ लोग बनावत रहन जा। तो हबी हमने 2026 में है जा, तो ओकर जो कंस्ट्रक्शन बाती अस्तबल के कैसे होला जो सेटिंग्स उस सब बाती?
2: अच्छा, तो मॉरिशस अगर हम देखते हैं तो तरह तरह के शेड्स होती हैं
0: जी,
2: जैसे कि शेड्स कंक्रीट से यानी 100% बेतों से
0: जी,
2: या फिर वो कंक्रीट वॉल और जो छत है वो तुल से बनते हैं
0: जी,
2: या फिर आयरन पाइप से यानी चियो और कोरिगेटेड आयरन शीट यानी तुल से बनते हैं।
0: मतलब कि आज तो हमने 2026 में है जा, और वो है जा पर ही हमने देखा था जा आगे आयरन शीट्स रहल तुल रहल, अभी जैसे बोला था वह कंस्ट्रक्शन गलवा बेतों गलवाते।
2: जी हाँ, क्योंकि ये जो बकरी का रेयरिंग करती हैं
0: जी,
2: वो बैकयार्ड सिस्टम में ज्यादा करती हैं
0: जी,
2: और जो स्पेस लिटिल स्पेस है तो वेरी सिंपल का शेड वो बनते हैं
0: जी,
2: मोस्टली आयरन पाइप्स और टोल से बनते हैं।
0: अच्छा, एक प्रश्न अवेला है जा परी विदेशी जी कि जब गाय सब हमने पोसत रह लीजा, तो जैसे बोला था हुआ बाकियात में हमने के आंगन में, और वो रेजिडेंशियल एरिया जैसे पोल्ट्री बात है, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं सक बजा करे रेजिडेंशियल एरिया में दूर चाहेला करे के, तो आज जब हमने इतना बरिस बाद भी एकर यानी कि पालन पशु पोषण करत है जा, तो कोनो इनकन्वीनियंस होला?
2: जी हाँ, अगर हम स्मॉल मात्रा में करते हैं, तो हम रेजिडेंशियल एरिया में कर सकते हैं.

0: लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे साफ रखें
1: जी।
0: कोई पोल्यूशन पड़ोसियों को कंप्लेन करने को देते हैं, मगर अगर हम लार्ज स्केल में करना चाहिए तो हमें नॉन रेजिडेंशियल एरिया में शेड को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और ये हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से
1: परमिशन
0: लेना चाहिए।
1: अच्छा, जरूरी है,
0: बहुत बहुत जरूरी है।
1: यानी कि पशुपालन चाहे वो बकरी हो, गाय हो, कुछ हो, परमिशन चाहे ला लेवे की।
0: एग्जैक्टली, हम बिल्डिंग लैंड यूज परमिट, ये परमिट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: और ये हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से प्राप्त करते हैं।
1: और जब एगो शेड बनावत हुआ, स्टेबल बनावत हुआ बकरी खातिर, तो कोनो लेंथ विद कोनो चीज चाहिला ये सब देखे के कितना यानी कि कितना बड़ा हो के चाहिला।
0: ये तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो हम पोसेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम का स्पेस 1.5 मीटर स्क्वायर
1: मिनिमम कितना चाहिला, मैक्सिमम कितना चाहिला,
0: ये तो किसान से डिपेंड करते हैं, वो कितने पैसा लगवा सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने में,
1: जी।
0: उसका डिमांड, उसका मार्केटिंग कैसे है, तो ये सब किसान पर डिपेंड करते हैं
1: जी। माने कि कोई रूल अभी तक नहीं है कि हाँ बस 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, जितना वो कर सकता है, जितना उनकी कैपेसिटी में है वो लोग कर सकते हैं।
0: बैकयार्ड सिस्टम में, यानी बैकयार्ड में बहुत लिटल
1: जगह
0: है, तो वो 10 या 20 तक रह करती है
1: जी।
0: मगर हम एक बिग फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो तो 40 या 50 को एनिमल्स भी रह कर सकते हैं
1: जी।
0: तो
1: जी,
0: ये डिपेंड करते हैं कि किसान कितने एनिमल रिया कर सकती हैं।
1: अच्छा जी, तो हमने संगे जुड़ा हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम, आज हमने पशुपालन खास बकरी के जन्म पालन बातें एक पर बतियात है जा नहीं भूलैया। हमने के फोन नंबर 402 80 85 एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमने वापस आयला जा।

फिरों से आप सब लोगों के स्वागत बाटे आज की चर्चा कार्यक्रम में। आज पशुपालन खासकर हमने बतिया था जब बकरी के जन पालन है और एकर पर बतिया खातिर फागे दानी सिद्धू को अधिकारी हवन जा श्रीमती गायत्री जालिम भी सिसर और श्रीमान रेखानंद भी देसी हमने देखा था जा कि कैसे बकरी के ओकर पालन पोषण होवेला और एक जन मात्रा बा उ काफ़ी बढ़ल बातें और एक मांग वो बातें है जा परी मोरिस में और हमने बतियात रही जा लेकेगी के बारे में। रेखानंद जी हमने के बतावा लेकेगी तो हाँ वो लोग के चाहेला जैसे हमने के आसरा बातें आशियाना बातें घर बातें रहे के वो लोग के कहे कि हमने देखी ला जा बाहर जन गाय सब बातें बोले लन सा छोड़ देबा खुला मैदान में वो लोग खाइन सब बाहर तो निमन से वो सब दूध मिली

0: किसानों को एक बड़ा प्रॉब्लम होता है।
1: जैसे?
0: जैसे जब तेज बारिश होती है तो शेड में कीचड़ हो जाता है। इस कीचड़ से बकरियों के पैर सड़ने लगते हैं और उन्हें बीमारी हो जाती है। तो इस समस्या का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है रेज शेड, यानी आप अपने बकरी का शेड जमीन से एक मीटर ऊपर उठाकर बनाइए।
1: बोला था वो पेड़ों चाहिए डाले के?
0: नहीं, वो पिलोची पर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अच्छा, तो इसका फ्लो लकड़ी यानी पैलेट से बनता है और बीच में छोटे छोटे गैप्स छोड़े जाते हैं। जब बकरी मूत्र करती हैं तो वे सीधा नीचे गिर जाती हैं। इसे बकरियां एकदम ड्राई और साफ रहे।
1: अच्छा,
0: ये छोटा सा तरीका आपके पशुओं को पैर की बीमारियों से 100% बचा लेगा। तो अब बात करते हैं शेड की छत और खिड़कियों के बारे में।
1: जी,
0: तो बारिश से बचने के लिए छत को हमेशा दरंदर यानी स्लोप
1: अच्छा
0: बनाइए और दीवारों से 2-3 फीट बाहर तक निकाले।
1: माने कि जब पानी वो सब नहीं जमा हुई।
0: जी हाँ, यानी वो ओवन से कहते हैं ना, वो जरूरी है। बकरी पालन में उचित वेंटिलेशन अत्यंत जरूरी है। शेड के अंदर पशुओं के वेस्ट से अमोनिया गैस बनती है। अच्छा। जो उनमें सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनती है।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: इस समस्या के निरावरण के लिए शेड में आमने सामने खिड़कियां अवश्य बनाएं। इन्हें फ्लो से 3-4 फीट की ऊंचाई पर रखें और सुरक्षा के लिए मजबूत लोहे की जाली लगाएं। बकरियों के शेड में मक्खी पशियों और चूहों के प्रवेश को रोकने के लिए शेड के खुले स्थानों में फ्लाई प्रूफ नेट्स का उपयोग करना।
1: माने कि जो बकरी हवन जा चाहेला निमन से लोगों के घर बनाए के जब उ लोगों सुरक्षित रहियन स और आजू बाजू जितना लोग रहेलन स उ लोगों के असुविधा नहीं हुई। अभी जैसे बोला था हुआ जो नेट इंसेक्ट प्रूफ नेट उस सब की बात, तो ये सब हम सोचते रहिए शायद स्कीम्स कोनो स्कीम्स बातें गायत्री जी।
2: तो इस क्षेत्र में और पशुपालक के सहायता के लिए सरकार द्वारा बहुत से योजना है, ग्रांट स्कीम्स, जैसे कि गोट शेड बनाने के लिए
1: जी,
2: या एग्जिस्टिंग गोट शेड को अपग्रेड करने के लिए। दूसरा है इक्विपमेंट के खरीदारी पर, जैसे कि ब्रश कटर, हाई प्रेशर क्लीनर या चिपर।
1: अच्छा,
2: हाँ, इत्यादि। कंपोस्ट के इक्विपमेंट खरीदने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्ट करने पर, और सीसीटीवी कैमरा सिस्टम के इंस्टॉलेशन करने पर, फेंसिंग इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन करने पर, और फॉडर के रोपाई पर भी है।
1: अच्छा, माने कि अभी जितना जना बकरी के पालन पोषण करेलन ये सब स्कीम्स बातें, तो चाहेला कर प्लॉटे हुई के चाहेला कुछ एगो डॉक्यूमेंट कौन चीज चाहेला?
2: हाँ,
1: जब इस स्कीम्स के फायदा उठाइन जा,
2: जैसे कि ब्रीडर्स गार्ड होना चाहिए।
1: हाँ?
2: और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को पेश करना चाहिए, जैसे कि उनके लीस एग्रीमेंट
1: जी,
2: या उनके टाइटल डीड, और उनके इक्विपमेंट खरीदने के लिए उनके कोटेशन। और जो अब सरकार 50% ग्रांट्स की ग्रांट देते हैं, तो जो बचा 50% उसका जो कॉस्ट है
1: जी, जी,
2: तो पशुपालकों को देना चाहिए एक लाइक बैंक स्टेटमेंट
1: जी,
2: प्रूव करने के लिए कि उनके पास ये पैसा है ये प्रोजेक्ट करने के लिए।
1: और बैंकों देने से कोनो सुविधा मिलेगा?
2: हाँ, डीबीएम के ओर से प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट पर
1: जी,
2: लोन भी मिलती है
1: जी,
2: और ऐसे भी संस्थाएं हैं जैसे कि स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के माध्यम से सुविधा मिलते हैं, जैसे पशुपालक के लिए जो फीड सब्सिडी ये मिलती है, इंश्योरेंस स्कीम्स है, वेटरिनरी ड्रग्स के खरीदारी पर भी सुविधा मिलती है, और ऐसे भी अन्य स्कीम्स हैं।
1: तो हम हाइये मांग करब जितना जना हमनी के देखा थवन सुना थवन एगो पशुपालक हवा बकरी पैदा करवार करेला और उकर पालन पोषण करेला तो ये सब सुविधा तोहरा मिली तो जइया कहाँ चाहे के परी फाहे के कोनो दफ्तर कहाँ
2: हाँ फाहे के बहुत से सब ऑफिस है

0: आप जाइए जो सब ऑफिस आपके नज़दीक है
1: जी,
0: वहाँ पर जाके एक्सटेंशन ऑफिसर से मिलिए और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भी मिलेगी और एडवाइस भी मिलेगी कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहिए
1: जी। और सकियन सा फ़ोन करें फागे के जो नंबर बा 433-4378 ये जो नंबर बा है मेन ऑफिस है सेपिया के इन्फॉर्मेशन यूनिट से मांग करिए 433-4378 न तो 433-9350 नंबर वा हमेशा लिख के रखिया और तोहरे काम आइए। विदेशी जी हमने के बला जो बकरी बातें हबी जो स्ट्रक्चर जो लेकेरी के बातें एक बारे में बोल ला और लेपोटेंस के उल्लेख कर ला तो जो खांसी बातें वो लोग कौन सी खा लन सर
2: जी। हाँ तो अब देखते हैं तो इस सिस्टम में बकरियों को चरने के लिए बाहर भेजने नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हाउसिंग सिस्टम है तो आपको फ्रेश खाना सीधा लाकर शेड के बाहर एक फीडर रैक में डालना होता है।
1: फ्रेश खाना वा कौन सी है
2: तो घास जो हम खेत से लाते हैं तो मॉरिशस में देखते हैं कि एलिफेंट ग्रास और स्कॉकिन टॉप्स मिलती हैं
1: जी।
2: इन्हें छोटा छोटा काट कर एक फीड ट्रफ में डालकर बकरियों को खिलाएं ऐसा करने से घास की वेस्टेज कम होती है।
1: अच्छा
2: जी हाँ जब काटते हैं तो वो सारा तो वो पूरा घास खाते हैं
1: जी।
2: अगर हम उसे होल देते हैं हाँ? तो बहुत वेस्टेज होती है तो हम चिपर यूज करते हैं उसे छोटा छोटा काटने को और वो सारा पूरा खा लेते हैं।
1: अच्छा
2: तो जैसे मैंने कहा तो इसमें लेस वेस्टेज होती है लेकिन बकरियों को जल्दी बढ़ाने के लिए सिर्फ घास काफी नहीं है उन्हें प्रोटीन भी चाहिए।
1: पुनाक खालन सर
2: जी हाँ इसमें प्रोटीन ज्यादा है और घास जैसे आकाशिया वो बहुत आसानी से मिलता है ये एक और एकदम फ्री होती है इसमें बहुत प्रोटीन है तो इसकी फ्रेश ब्रांचेस को काट कर शेड के अंदर लटका दें।
1: अच्छा
2: हमें जमीन पर कभी नहीं
1: ऐसे फैलाना चाहिए
2: जी, हाँ, जी क्योंकि जी। क्योंकि वो वेस्ट से मिलते हैं और ये बकरी उन्हें कभी भी नहीं खाएंगे।
1: तो जन जन जन जन जैसे बोला था वह जन फ्रेश जन पत्ता उस सब वाला एलिफेंट कौन सी
2: एलिफेंट ग्रास
1: ग्रास जन बातें अब धरला जन रेगल बातें वो कोपोस्ताज ने बनीला
2: जी हाँ तो हम सारे जो लेफ्ट ओवर कहते हैं तो हम उसे कंपोस्ट तो, वेस्ट एनिमल वेस्ट के साथ हम कंपोस्ट कर सकते हैं।
1: यानी कि कुछ ज़ाया नहीं होला वो लोग के जुन बाटे और जुन रह जाला जुन लेफ्ट ओवर्स जन रह जाला वो लोग से आप लोग वेस्ट यानी कि कंपोस्टाज बना
2: करते हैं।
1: तो आगे हमने जानत रली जा बलिए तो ओके बलिए कैसे होला बलिए यानी कि जुन ओकर साफ सफाई जब होला
2: अच्छा, जब अच्छा, हाँ तो हम उसे कंपोस्ट करते हैं तो और ये किसान खेत में इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
2: तो ये
1: और इसका इस्तेमाल
0: पकेट रहते बलिए
1: जी
0: हाँ तो हमारे पशुपालक एक या दो बार एक हफ्ते में वो सॉलिड वेस्ट
1: जी
0: वो स्क्रेप करके निकालते हैं
1: जी
0: और जो यही एक कंपोस्ट यूनिट में भर देते हैं
1: जी
0: हाँ और जो भी लिक्विड वेस्ट है वो एक ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए से एक सेप्टिक टैंक में जाना चाहिए और वहाँ पर रखते हैं
1: जी
0: हाँ वो लिक्विड वेस्ट ज़मीन को कंटामिनेट नहीं करना चाहिए इसीलिए एक सेप्टिक टैंक में अच्छे तरह से वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और जब भर जाता है तो वेस्ट वाटर अथॉरिटी हाँ वेस्ट कैरियर्स के जरिए से उसे निकालते हैं।
1: अच्छा माने कि जमाना बदल गल बात है आगे जैसे रहल आगे जैसे खुला मैदान रहल सब कुछ हुआ था रहल आज जो सैनिटेय के हमने बात करे थे जा प्रॉपरली जो ओकर वेस्टेज बातें ओकरा डिस्पोज करल जाला ये बहुत ही अच्छा बार बाटी
0: जी ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे मेरी कॉलीग ने बताया कि बहुत से बैकयार्ड फार्मिंग होती है बहुत से नेबर्स होती है तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे साफ सफाई करते हैं वो वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं।
1: कोनो कंट्रोल होला
0: कंट्रोल नहीं है

0: लेकिन हमें बहुत से कंप्लेंट्स आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, तो कभी कभार तो उन्हें स्टॉप ऑर्डर्स भी मिलती है, तो ये सब ना होए, तो इसीलिए हम एडवाइस देते हैं पशुपालकों को कि वे अपने शेड को अच्छी तरह से साफ रखें और कैसे वेस्ट को डिस्पोज करें ताकि इससे फ्लाइज भी ना आए और नेबरहुड को कोई आपत्ति ना हो।
1: जी, हमने जब बात करी लाजा फागे यानी कि फूड एंड यानी कि रिसर्च, हैदराबादी रिसर्च वो होला गायत्री जी।
0: हाँ, तो फागे में हमारे दो लाइवस्टॉक रिसर्च स्टेशन है
1: जी,
0: जहाँ पर बकरी के को लेकर रिसर्च होता है। एक है क्योपी प्लास्टिक रिसर्च स्टेशन और दूसरा है बेलमा रिसर्च स्टेशन। वहाँ पर बकरी पर, फॉडर पर तरह तरह के रिसर्च होता है। अब हमारे रिसर्च स्टेशन में एक प्रोसेसिंग लैबोरेटरी भी है
1: जी,
0: जहाँ पर अब गोट मिल्क प्रोसेसिंग पर रिसर्च होती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए गए जैसे कि गोट चीज और नया प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक्स फ्रॉम गोट मिल्क। हाँ, इससे
1: साबुन साबुने जो सब बनावल जला आजकल हमने देखी।
0: हाँ,
1: क्रीम वो, हाँ,
0: ये सब बनती है।
1: अच्छा, और ये सब जो बातें हमने की लोकल मार्केट में अवेलेबल बातें की बाहर बिदावल यानी कि ले जावल जा रहा?
0: नहीं, ये सब सिर्फ रिसर्च स्टेज पर ही
1: जी,
0: है
1: जी।
0: एक एंटरप्रेन्योर है जिसने कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स डेवलप किया है, लेकिन ये सिर्फ लोकल मार्केट छोटा सा प्रोडक्शन है
1: जी।
0: हाँ,
1: और वो काम चला था अभी?
0: हाँ, इसका डिमांड है
1: जी।
0: हाँ, क्योंकि अब तो बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके बहुत डिमांड है
1: जी। हाँ, जी, ये तो बढ़िया बात बात है कि खाली जो बकरी बातें लोग खा लन सा होकर दूध पिए लन सा, मोरिस में कितना जना दूध पिए लन जा बकरी की? हमने सब ली सब जानी ला जा गाय के हमने ज़्यादातर जोर दे ला सा, पर बकरी वो की बात है।
0: हाँ, कब इसका डिमांड होते हैं, जैसे जब कोई बीमार है, कोई ऐसे बीमारी है जिसके लिए लोग बकरी के दूध का को खोजते हैं
1: जी।
0: हाँ, लेकिन ये इट्स नॉट कॉमन
1: जी।
0: हाँ, कुछ लोग ऐसे मांग करते हैं, लेकिन ज्यादा मांग नहीं है गोट मिल्क के।
1: गोट मिल्क की, तो जैसे बोला था रिसर्च सब हुआ था, तो तोहर देखे में कौन चीज चाहेला करे कि जमे ज्यादा लोग जो बात जस्ती लोग एक बारे में जनियन जा और उकर फायदा के बारे में जनियन जा?
0: जैसे मैंने कहा ये अभी तक रिसर्च स्टेज पर है, हमें एक्सटेंशन को हम वेट करते हैं कि जब रिसर्च हो जाए तो फिर फैक्ट शीट्स होंगे, फिर इसको ले जाके हम ब्रीडर्स के यहाँ या पब्लिक के यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे।
1: तो चला। हाँ, जी, जस्ट इन्फॉर्मेशन तू हूँ खोजा था वह 402 80 85 पर हमने इस पर करे थे जा।

0: हम तो बोलब हम ये संगे रहा जा कहूँ नहीं जाइए जा आज की चर्चा कार्यक्रम देखत हुआ सुनत हुआ और आज बकरी पर बतियात है जा अभी गायत्री जी बोले हुआ जुन जुन लावताज बातें बकरी पालन के हमने के बतावा जब एगो बकरी वो बछड़ा देवेला ओकर छोटा लड़का लोग के वो कैसे ओकर पालन पोषण करेला एगो माँ हवन वो लोग दूध पियावेलन कैसे होला
1: पहले तो मैं आपको उसके प्रोडक्शन साइकिल पर बात करूंगी। इसके प्रोडक्शन साइकिल ऐसे है कि एक एडल्ट फीमेल गोट जिसको हम डो कहते हैं वहाँ दो साल में तीन बार किडिंग कर सकती है।
0: अच्छा।
1: और यानी कि बच्चा देते हैं और हर किडिंग में आमतौर पर एक से दो बच्चा हो सकता है
0: जी।
1: अगर आप 9 एडल्ट डोज और एक एडल्ट बक से एक फार्म शुरू करते हैं तो दो साल में आपके हेड साइज 50 हेड से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही प्रोलिफिक है। उसका रिप्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है 5 महीने
0: जी।
1: तो इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं
0: जैसे कि
1: जैसे मैंने बताया कि दो साल में 10 रिप्रोडक्टिव एनिमल्स से आपको 50 हेड से ऊपर एनिमल्स हो जाता है और बकरी जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे हम एक मेल को लेंगे एक दिन से हम उसको एक साल तक उसका देखभाल करेंगे और एक साल पर तैयार हो जाता है। उसका स्लोटर वेट अच्छा है और उसका स्लोटर हो सकता है।
0: अच्छा।
1: स्लोटर एज और स्लोटर वेट 1 ईयर

0: वह तैयार हो जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो शॉर्ट साइकिल है और बहुत से पैसा नहीं लगता है एक छोटा सा फार्म शुरू करने के लिए, और प्रोलिफिक है, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है।
1: ओके, ये तो सच्चे में फ़ायदा की बात है। और जितना तोहर लगे बकरी बातें, माने कि ढेर पैसा नहीं लगेला ओकर पालन पोषण में, पर बाद में ओकर से पैदा माने कि पैसा आवेला।
0: हाँ, और कम जगह भी, बहुत जगह नहीं
1: जी
0: लगती है इसके उसको
1: पालने में,
0: पालने
1: में।
0: हाँ।
1: जी जी, और कौन कौन लाभ होता है बात जब प्रोडक्शन साइकिल की बात करे
0: तो? हाँ, तो हम देखेंगे तो मांस के मांग
1: उतर रहती था।
0: हाँ, हमेशा बनी रहती है, और छोटे स्तर पर कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं
1: जी।
0: और मैंने बताया कि बकरी जल्दी तैयार हो जाती है, और इसीलिए हमने देखा कि कुछ साल से बहुत से लोग ज़्यादातर गोट प्रोडक्शन में
1: इंटरेस्टेड
0: है, क्योंकि आप देखेंगे एक रिप्रोडक्टिव मेल को अगर खरीदेंगे तो 20,000-30,000 तक इसमें हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गाय खरीदेंगे तो आज इस उसका जो कॉस्ट है वो 120,000 से ऊपर हो गया है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: तो इसीलिए कम कॉस्ट में आप बहुत से लोग बकरी का
1: पालन पोषण
0: ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
1: जी, तो अभी तो हर से पूछ ली जन एगो माँ बाती ओकर बछड़ा।
0: हाँ।
1: की
0: हाँ, तो जब एक बच्चा का निशांस होता है तो माँ के साथ ही रहते हैं, दूध पीते हैं, यही पर वो उस वो ग्रो करेगा।
1: जी जी।
0: हाँ।
1: जी,
0: और जब 3 महीने हो जाता है तब वीनिंग होती है, मेल को अलग करते हैं, फीमेल को अलग करते हैं, और माँ को फिर से ब्रीडिंग के लिए बक के यहाँ भेजते हैं।
1: जी जी,
0: तो यही प्रोडक्शन साइकिल
1: चलती
0: रहती है। हाँ,
1: ये तो बहुत बढ़िया बार बातें। और हमने बात करे थे जलावताज जन बातें जन बकरी के पालन है, अभी हमने बात करे राजा फूड सिक्योरिटी बायो सिक्योरिटी, ये कौन सी है विदेशी जी?
2: जी हाँ, तो बायो सिक्योरिटी यानी फॉर्म की सुरक्षा, ये जो सब मेजर्स हैं किसान को लेना चाहिए ताकि वो अपने पशुओं को अचानक आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं।
1: जी,
2: तो पहला काम वो अपने शेड के चारों तरफ एक मजबूत फेंसिंग लगाएं ताकि बीमार आवारा कुत्ते और जंगली जानवर अंदर ना आ सके।
1: जी,
2: और दूसरा और सबसे जरूरी नियम वो क्वारंटाइन जिसे कहते हैं, जब भी आप कोई नई बकरी खरीद कर लाएं तो उसे कम से कम 3 हफ्ते के लिए पुरानी बकरियों से एकदम अलग रखें।
1: एक और रीजन कौन सी है?
2: ये छोटी सी सावधानी आपके पूरे फॉर्म को किसी भी बीमारी के खतरे से बचा लेगी, क्योंकि अगर वो जानवर वो इन्फेक्टेड है
1: जी,
2: तो वो बीमारी फैला देती अपने।
1: तो जब बोला था चाहे ला क्वारंटाइन में डाले के, तो जन बकरी वो बाहर से मंगावल गल बाते कि जन धरला मोरिसवे में बाते दूसर जगह से अनले हुआ
2: मोरिसवे में दूसरा फॉर्म में, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम अपने ओर से और प्रिकॉशंस ले रहे हैं
1: जी,
2: हमें मालूम नहीं कि दूसरे फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं
1: जी,
2: तो अगर हम उसके बकरी को अगर अपने बकरी के साथ
1: मिला
2: तो ये और उसे बीमारियां हैं
1: तो कहाँ रखवा? अब बोला तो हुआ एक लेके गई बातें, अब दूसर लेके गई नहीं बातें, तो हम उकरा कहाँ डालब, दूसर बकरी लोग के कहाँ डालब?
2: नहीं, तो ये जरूरी है कि अगर हम खरीदते हैं तो एक दूसरी लेके गई में जगह खोजना चाहिए।
1: अच्छा,
2: ताकि बायो सिक्योरिटी जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है।
1: जी जी।
2: अच्छा, और डीवॉर्मिंग जैसे कि कीड़े का इलाज, ये बहुत ज़रूरी है। तो बकरियों के पेट में कीड़े हो जाती हैं, इससे बकरी पतली हो जाती हैं, भूख कम लगती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। हर 3 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग करना चाहिए।

0: दवाई की मतलब और प्रकार के लिए अपने वेटरनरी ऑफिसर से सलाह ली। तो ये बहुत जरूरी है।
1: तो ये जन जैसे बोले था जन सर्विस वेटरनरी जो बाती वो फागवे के दने से मिलल मिले ला कि चाहे ला नहीं एगो हमने के संपर्क रखे के कोनो वेटरनरी
0: वेटरनरी सर्विस ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो बहुत है। और ये फार्मर्स उनके कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए रीजन वाइज और जो भी कोई बीमारी है उन्हें तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए
1: जी।
0: और ये सर्विस फ्री है।
1: अच्छा
0: जी हाँ। और जो वेटरनरी ऑफिसर वो आएंगे और बकरियों का इलाज करेंगे बिल्कुल फ्री
1: जी। और चाहे ला ओकर जन जैसे बोला था हुआ पालत हुआ पोसत हुआ तो चाहे ला के देखभाल करे के और ये एक मस्त है। ये नहीं है कि खाली अनले हुआ खिलावत हुआ पिलावत हुआ खैबा बाद में वो सब नहीं, चाहे ला लोगों के ध्यान रखे के
0: जी हाँ। और जरूरी है कि हर रोज हम अपने बकरियों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब वो अपनी बकरियों को ऑब्जर्व करते हैं तो अगर उनके आंख या नाक से पानी गिरना या डायरिया होना
1: जी,
0: या कोई बकरी अकेले बैठ रही है तो सांस लेने में तकलीफ हो रहे हैं तो ये सब इंडिकेशंस साफ कहते हैं कि ये बकरी बीमार है।
1: मानी कि उनके जो बिहेवियर्स है
0: exactly.
1: इन पर ध्यान रखना चाहिए। तो हैजा पर ही गायत्री जी बोले हो स्कीम्स बाटे तकनो प्रशिक्षण मिले ला जो ब्रीडर्स हवन जा जो पशुपालक हवन जा कोनो प्रशिक्षण कोनो ट्रेनिंग मिले ला एकर से आगे पालन पोषण करी से आगे
2: बकरी पालक की हमेशा मांग रही है एक बेसिक हेल्थ ट्रेनिंग कोर्स जो पहले वेटरिनरी डिवीजन ने दिया था
1: जी।
2: और वे प्लान कर रही है।
1: अच्छा यानी कि सही रास्ते
2: बेसिक एड वेटरिनरी के आने से पहले जो भी पहला एड करना चाहिए एनिमल को तो ये सब सिखाते हैं
1: जी।
2: हाँ ये सब वेटरिनरी डिवीजन ही देती है ये ट्रेनिंग
1: जी। हाँ काहे कि कुछ हो कर बा चाहे ला वो लोग के प्रॉपर ट्रेनिंग हो के
2: हाँ।
1: कहे नहीं ऐसे ही अन के भन आके डाल दे बा कुछ हो दे बा खिलाए के पियाए के नहीं चाहे ला निमन से जन काम करे था एगो ट्रेनिंग एगो प्रशिक्षण ये बहुत ही जरूरी है हाँ। अब हमने तनी सुन रिकॉर्ड कीपिंग की बात करब सा विदेशी जी।
0: जी हाँ तो छोटी सी बात है रिकॉर्ड कीपिंग लेकिन बड़े नुकसान से बचा सकती है ये।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्ड कीपिंग एक सिंपल कॉपी और पेन रखें उसमें लिखें कि आपके पास कितनी बकरियां हैं यानी कितने की मेल और फीमेल या यंग और एडल्ट तो ये जिसे हज स्टेटस कहते हैं तो हम इनको रिकॉर्ड करना और कब कीड़े की दवाई दी
1: जी
0: हाँ जी ये भी इम्पोर्टेंट है कौन सी बकरी ने कब बच्चे दिए तो ये सब कौन सी बकरी बीमार हैं और क्या इलाज किया तो ये रिकॉर्ड रखने से आप सही फैसले ले सकते हैं और डुप्लीकेट काम नहीं करना पड़ता और लॉस कम ही होता है
1: जी।
0: तो ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है।
1: ये तो बहुत ही सच्ची बात बोली हुआ कि चाहे ला वो रिकॉर्ड रखे कि और वो होला हमने आगे जानी ला जा जब वेटरिनरी वो सब आत रलन जा जिन गाय के वो लोग के कान में एगो लाइक नंबर प्लेट वो सब होला बकरी वो के
0: जी हाँ वो तो प्लास्टिक तक पहले अब तो माइक्रोचिप पर डाले जाते हैं
1: जी।
0: तो ये भी रिकॉर्ड कीपिंग और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स से कहते हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं
1: जी जी जी जी। और कोनो लालुआ बातें जब बकरी के पैदावार करत हुआ उकर पालन पोषण करत हुआ जे निमन से नहीं करत हुआ जन जन चेक होवेला फागे दाने से जन वेटरिनरी आवेलन से जन ऑफिशियल सब जाके देखे लन जा कि हाँ उकर निमन से पालन पोषण हुआ था कुछ ऐसा होला
2: हाँ। तो हम फागे के लाइवस्टॉक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमेशा जाते हैं
1: जी
2: पशुपालक के फार्म पर हाँ और उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं एडवाइस देते हैं हम ट्रेनिंग भी देते हैं जैसे कि गोट प्रोडक्शन पर फॉडर प्लांटेशन पर फार्म मैनेजमेंट पर और इससे इसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलती है जो MQA अप्रूव है।
1: अच्छा
2: हाँ तो हम बहुत ही टेक्निकल सपोर्ट देते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कंडक्टेड

0: शोज या ग्रुप मीटिंग्स उनको बताते हैं कि कैसे वे अपने प्रोडक्शन करना चाहिए. तो बकरी पालन में बहुत इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है क्योंकि आप बिल्डिंग बनाएंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, रिप्रोडक्टिव एनिमल्स खरीदेंगे. तो इसके एक नया एंटरप्रेन्योर आता है इस क्षेत्र में, तो उसको ये सब ट्रेनिंग लेना चाहिए अगर वो अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं.
1: जी,
0: तो ये सब हम एक्सटेंशन सर्विस करते हैं. वेटरिनरी डिवीजन जाते हैं जब कोई भी इश्यूज होती है, लाइक बीमारी ये सब, और ऐसे ही हम सब मिलके उनको एनकैड्रे, जैसे कहते हैं, एनकैड्रे करते हैं.
1: जी, तो आज की चर्चा कार्यक्रम है जी परी समाप्त होला. जाए से आगे विदेशी जी.
2: जी हाँ, मैं जाने से पहले एक शर्त के बारे में
1: जी
2: कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ मेल बकरी मेल एनिमल्स को पाल रहे हैं तो शर्त सिंपल बनना चाहिए
1: जी.
2: मगर अगर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं यानी मेल और फीमेल, तो उस शर्त में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, पार्टीशन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है
1: जी.
2: क्योंकि मेल एक तरफ और फीमेल एक तरफ, क्योंकि अगर वो साथ में रहते हैं तो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो शायद को अच्छी तरह से बनिए
1: जी.
2: तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ.
1: धन्यवाद गायत्री जी. जाए से आगे.
0: हाँ, तो पशुपालन पर जानकारी प्राप्त करने के फारे के सैं पियर के ऑफिस आइए या किसी भी सब ऑफिस लाइवस्टॉक के आपके लोकेलिटी के नज़दीक है, वहाँ पर जाके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्राप्त कर सकते हैं. सैं पियर के एक्सटेंशन ऑफिस का नंबर आपने बताया, जैसे 433-9350 या 433-4378. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद.
1: आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद. आज की चर्चा कार्यक्रम है जो परी समाप्त होला. आप सबको के नमस्ते.
0: नमस्ते.

0: आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपके साथ अभी उदय, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष मार, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। 4 बजे के संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। साल की शुरुआत से अब तक देश में चिकनगुनिया के 3,476 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सर्दी की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। साल की शुरुआत से ही अमरीकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चिकनगुनिया को लेकर यात्रा स्वास्थ्य सलाह जारी कर रही है। पिछले हफ्ते मॉरिशस को लेकर इस दो की स्वास्थ्य सलाह जारी कर दी गई थी। अंतर धार्मिक सम्मेलन का 4th संस्करण इस समय पाया के बहाई केंद्र में हो रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए कई प्रतिभागी इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बेहतर समझ बढ़ाना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना। इस बातचीत सत्र में अंतर धार्मिक संवाद भी शामिल है। इसमें न केवल मॉरिशस में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक साथ रहने और सामाजिक एकता पर चर्चा की जाएगी। MSM की शिक्षा समिति ने आज दोपहर को शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद की कड़ी आलोचना की। ये आलोचना लीला देवी दुखन लक्ष्मण की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की कमी की निंदा की और कहा कि मंत्री को एक सही रोडमैप पेश करनी चाहिए। उन्होंने जनवरी 2027 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा की भी आलोचना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा उठाया गया, स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। समिति का मानना है कि मोबाइल फोन एक उपयोगी शैक्षिक उपकरण हो सकता है, बशर्ते कि इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनके 5 देशों के दौरे के का एक अहम पड़ाव भी पूरा हो गया, जिसमें इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नेदरलैंड्स की उच्च स्तरीय यात्राएं शामिल थी। और उधर अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी धमकियों और संभावित अमेरिका इजराइल हमलों के डर के चलते तेहरान सरकार अपनी जनता को जमीनी हमले के लिए तैयार कर रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत, नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: Aapke sitare.
5: सोमवार 18 मई, घड़ी मिला लीजिए 4:04। यहाँ पर होने को है रेडियो मनोरंजन पर, मैं सुमी आ चुकी हूँ आपका साथ देने के लिए, आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर। और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। दिन कैसे बीत रहा है आप सभी का? ऐसे सोमवार थोड़ा सा भारी लगता है, वीकेंड के बाद, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लोग जो है जुड़ चुके हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। 2 घंटे तक खूबसूरत गाने तराने आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफ़र में की शुरुआत के लिए। और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज एक ऐसे कलाकार पर हम बात करेंगे जिनका जन्म 17 मई 1951 को हुआ था और जो 26 फरवरी 2024 को चल बसे थे। गज़ल गायकी में इनका बहुत बड़ा नाम है और साथ ही प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। हम चाहेंगे कि ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं और तब तक आप सोचिएगा कि आज आपके सितारे ये प्रोग्राम किस पर होने वाला है। हमें पूरा यकीन है गाने को सुनते ही आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा।

0: के सितारे
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप साथ दे रहे हैं और अभी तक आपने जो है अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज किस कलाकार पर हम जो है आपके सितारे ये प्रोग्राम करने वाले हैं। सो यस, आज हम बात करेंगे पंकज उदास जी पर। 17 मई को इनकी जन्मतिथि थी और जो है आप इन से जुड़ी कुछ बातें जोड़ेंगे, इनके करियर से जुड़ी कुछ बातें जोड़ेंगे, इनके गाए हुए खूबसूरत गज़लें, खूबसूरत गीत आपके लिए हम चलाएंगे। पंकज उदास जी ऐसे गज़ल गायकी के दुनिया में काफ़ी इनका नाम रहा है, आज भी है। प्लेबैक सिंगर के रूप में भी ये काफ़ी उभर कर आए हैं हिंदी सिनेमा में, वहीं जो है इंडियन पॉप म्यूज़िक में भी इन्होंने जो है इस शैली में भी काफ़ी गाने गाए हैं। ऐसे 80 के सालों में 1980s में आहट इस एल्बम से, इस गज़ल एल्बम से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। और पंकज उदास जी का ये जो गाना अभी आपने सुना नाम फिल्म से लिया गया, ये इनके करियर के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है। तो चलिए इस दो घंटे के सफ़र में तैयार हो जाइए, कुछ खूबसूरत गाने तराने आपके लिए हम चलाने वाले हैं। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं तो बेशक आपका वेलकम है, आपका स्वागत है 4028070 पर, या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250620 पर।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं। इस समय बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स होते हैं अपने कामकाज से निकलकर अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो बस रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे ट्रैफिक जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही हमारा प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है और खूबसूरत गाने आपके लिए ऑब्वियसली हम चला तो रहे हैं। यहाँ पर देखते ही देखते 4:30 बज चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं आपके सितारे इस प्रोग्राम में पंकज उदास जी के बारे में। पंकज उदास जी जो है इनके अन्य दो भाई हैं, वो दोनों भी गज़ल गायकी से जुड़े हुए हैं। ऐसे पंकज उदास जी सबसे छोटे हैं, इनके बड़े भाई मनहर उदास जी इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं।

0: गजल भी गाए हैं और हिंदी प्लेबैक सिंगिंग भी की है, मतलब कि हिंदी गाने भी गाए हैं फिल्मों में. वहीं इनके जो दूसरे भाई हैं निर्मल उदास, वो भी गजल सिंगर रहे हैं. और फिर जब इनका परिवार गुजरात से मुंबई आया, तब इन्होंने जो है वहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई. ऐसे इनके जो परिवार है वो संगीत से इनका जो है काफ़ी नाता रहा है. और पहले तो पंकज उदास जी जो है तबला सीखने के लिए इन्होंने क्लास ज्वाइन किया था, और फिर धीरे धीरे जो है गायकी की ओर इनका रुख बढ़ता गया. और जो है इनके गाए हुए गाने आज भी लोग बहुत ही पसंद करते हैं सुनना, और लोग जो है इनके गायकी के काफ़ी दीवाने हैं. तो चलिए इस दीवानगी को हम बरकरार रखते हैं और इस अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं.
1: You're listening to RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो सो मच। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पंकज उदास साहब और जो है इनके गाए हुए गानों पर हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर पंकज उदास साहब जो है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ये गाना जो है इन्होंने गाया था। और जो है इस गाने के बाद इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और वहीं पर जो है उसके कई सालों बाद इन्होंने संगीत नाट्य अकेडमी जो है ज्वाइन की थी।

और जहाँ पर इन्होंने तबला सीखा था, और जो है यहाँ पर इन्होंने संगीत में जो है काफ़ी रुचि रही थी। इन्होंने मुंबई में इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक जो है सीखना शुरू किया था, और इसी तरह से जो है संगीत की ओर इनकी रुचि बढ़ती गई, उर्दू पोइट्री की ओर इनकी रुचि बढ़ती गई, गज़ल गायकी की ओर इनकी रुचि बढ़ते गई, और जो है लगभग इन्होंने कुछ समय विदेश में भी बिताए थे, कॉन्सर्ट किया करते थे, और 80 के सालों में इनके जो प्राइवेट एल्बम्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। और वहीं पर इनके कुछ पॉपुलर गानों की अगर हम बात करें तो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इस गाने को कौन भूल सकता है भला, और इस गाने की बात हो रही है तो क्यों ना ये गाना हम आपके लिए यहाँ पर ज़रूर चलाएँगे, चांदी जैसा रंग है तेरा। तो चलिए कोई गाना अगर पंकज उदास जी का आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं तो बेशक आप जो है हमारा साथ दे सकते हैं, आपके सितारे इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम जो है चलेगा शाम के 6 बजे तक। तो कोई खूबसूरत सा गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं सो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। और अभी के लिए जो है यहाँ पर ये जो अगला गाना है हम आपके लिए चला रहे हैं, और थोड़ी ही देर में चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इस गाने को हम ज़रूर आपके लिए डेडिकेट करेंगे।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूँ, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायकी टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। वक्त

चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मनोरंजन पर। हमारा और आपका साथ रहने वाला है आपके सितारे इस प्रोग्राम में शाम के 6 बजे तक। और आज पंकज उदास जी पर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं और उनके खूबसूरत गाने आपके लिए हम चला रहे हैं। और इस सेकंड आवर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ जिसे हमने लिया है जीवन युद्ध इस फिल्म से, पंकज उदास और अलका याग्निक जी की आवाज़ों में। ये लवली सा तराना आप सभी के लिए।

0: के सितारे।
1: ऐसे पंकज उदास जी की बात करें तो अपने करियर के दौरान काफ़ी अवार्ड्स इन्हें मिले हैं। 2025 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। 2024 में इन्हें जो है लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूज़िक अवार्ड इन्हें दिया गया था। 2006 में जो है इन्हें पद्मश्री मिला था और 25 साल गज़ल गायकी में पूरा करने के लिए। वहीं पर अन्य कई बड़े बड़े अवार्ड्स भी इन्होंने अपने करियर के दौरान हासिल किए हैं और इनके गाए हुए गाने तो ऑब्वियसली एवरग्रीन रहे ही हैं। इनके एल्बम्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे एल्बम्स जो है 80 और 90 के सालों में आए। इनके जो तीन भाई हैं इन तीनों ने भी तीन मौसम नाम का एल्बम रिलीज़ किया था, जहाँ पर जो है मनहर उदास, निर्मल उदास और पंकज उदास इन तीनों ने जो है एक साथ गाने गाए हैं। उस एल्बम को भी लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया था और यहाँ पर इनके जो है कुछ गाए हुए गाने अभी के लिए हम आपके लिए चला रहे हैं। ऐसे में अगला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म का ये तराना है।

0: के सितारे।
1: तो चलिए माला जी इस समय हमारा साथ दे रही है, गानों को एंजॉय कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है। इंडीड पंकज उदास जी के कुछ एल्बम के गाने हम आपके लिए चला रहे हैं, तो कभी कभार कोई गज़ल चला रहे हैं, कोई फिल्मी गीत चला रहे हैं, और ऐसे ही ये जो म्यूज़िकल सफ़र आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते चलिए एक और गाने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो तराना है ये एक गज़ल होगी पंकज उदास जी की आवाज़ में, उम्मीद करते हैं ये गज़ल भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो रेडियो मनोरंजन पर आपके सितारे प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं पंकज उदास साहब के बारे में।
2: You're listening to RM3 Radio Mano।

0: आपके सितारे।
1: चलिए ऐसे पंकज उदास जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने ये हुए गानों द्वारा वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में रहेंगे। 72 इयर्स की उम्र में लंबी बीमारी के चलते वो 26 फरवरी 2024 को चल बसे थे, और उनकी आखिरी गाई हुई जो गज़ल थी वो थी बैठे हो क्यों गुमसुम। ऐसे अभी के लिए ये गज़ल तो हमारे पास नहीं है, होती तो हम आपके लिए ज़रूर चलाते, लेकिन इन्हीं खूबसूरत गज़लों को और गानों को सुनते सुनते आज के प्रोग्राम में हम इन्हें याद कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे में अगले तराने की ओर बढ़ते हैं, और इस समय सरिता जी कट्रबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही है कि प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है, गानों को और सभी नगमों को वो एंजॉय कर रही है। चिट्ठी आई है चला देना, ये गाना तो हमने फर्स्ट आवर में ही चला दिया था सरिता जी, और उम्मीद करते हैं ये जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा।

0: आपके सितारे।
1: और चलिए इसी के साथ आपके सितारे इस प्रोग्राम के हम अंत तक आ गए हैं। और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हमने पंकज उदास जी के गाए हुए खूबसूरत गाने आपके लिए चलाए, और आपको उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। और जाते जाते ये आखिरी गाना आप सबके नाम हम करते हैं। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। तो ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर हमारा साथ देते रहिए। शुक्रिया।

सोमवार 18 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल कोंटोगैल में कुछ हिंसक घटनाएं हुई। एक हेल्थ ट्रक पर क्वाइट बाइक चलाने को लेकर दो गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था। इस हंगामे के दौरान कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की ली गई मदद। इस घटना को लेकर 5 लोगों के साथ की जा रही है पूछताछ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में एक ऐसे आयोग का गठन का प्रस्ताव है जो मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थानों और राज्य के कामकाज से जुड़े कई बड़े सुधारों की समीक्षा करेगा। पिछले साल 15 लाख से अधिक पर्यटकों ने देश का दौरा किया, जिससे लगभग 103 बिलियन रुपए की कमाई हुई।

0: समुद्र तट के होटलों को चुनने वाले पर्यटकों के अलावा अब ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपार्टमेंट, विला और बंगले किराए पर लेना पसंद करते हैं। और विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोटनबर्ग शहर में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनकी 5 देशों की यात्रा का एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल कोंटोरेल में कुछ हिंसक घटनाएं पेश आई, प्राप्त जानकारियों के अनुसार एक हेल्प ट्रक पर क्वाड बाइक चलाने को लेकर 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया था। इस हंगामे के दौरान कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की मदद ली गई। इस घटना की सही वजह और पूरी सच्चाई का पता लगाने की दिशा में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसके चलते 5 लोगों के साथ भी पूछताछ की जा रही है। रिया काम्बुजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
1: कोंटोरेल में सोमवार सुबह माहौल सामान्य दिखाई दिया, लेकिन कल रात की घटनाओं के निशान अब भी मौजूद हैं। यह हेल्प ट्रक उन घटनाओं का गवाह बना जब एक समूह क्वाड बाइक्स लेकर यहां पर आया।
2: Moi, je pars galber vers 4h par là. Right. Je me pars galber, me trouve un quad bike. Le terrain. Nous laisser que ça, c'est pas fait, hein, pas fait, hein. Je ne comprends pas. Et l'eau là, quand fini, ça fait un truc correct. Et l'autre groupe est venu, qui me sont regalpés là. Maintenant, moi, tiens, le. C'est pas comment je donne les temps, que c'est non.
3: Moi, je suis allé au pique-nique dans mon bus avec ma famille. Moi, quand je retournais, mon nièce Pédiama et papa là-haut. C'est, en d'autres mots, c'est une nouvelle découverte. Là, je me fais à Saint-Pierre, je suis venu. Donc, je suis là-bas. Moi. Là, le matin, quand je me levais, je me disais, il y a un quad bike, puis pédale de quad bike dans beaucoup de sentiers.
1: स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इस स्थल पर पहली बार इस तरह की घटना हुई है।
4: Habitué arrivé ben ça fait comme ça dans l'endroit?
5: Non, pour mes frères, il n'arrivait pas. Pour mes frères.
4: Sinon, dans sa parcours de santé là, beaucoup de monde a fait jogging là-bas?
5: Un matin, oui, c'était un matin, tantôt, je t'allais.
1: रविवार शाम 6 के करीब इत्तला करने पर पुलिस ने तुरंत कदम उठाया। विशेष इकाइयों जैसे कि स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और स्पेशल मोबाइल फोर्स को भी तैनात किया गया।
6: Vu qu'il y a une altercation entre des groupes, la police, dans un premier temps, la priorité, c'était qu'il y amène un accalmie dans la situation. Pendant l'opération, il y a une information qui finit dans la police concernant un groupe de personnes qui finit refuser dans un terrain boisé aux alentours. Et la police, dans une logique opérationnelle, nous finit un chou qui, cette personne-là, capable d'être évacuée dans une place qui est safe, en toute sécurité. Et que la police finit réussir avec le support de plusieurs unités pour évacuer cette personne-là dans l'endroit sécurisé aux alentours des minuit.
1: Deux vahanon et un quad bike ko aag ke hawale kar diya gaya. Ek aupcharik shikayat darj ki gayi hai aur ghatna ki satyik paristhitiyon ki jaanch jari hai.
6: Et là, ben, exercice d'identification qui finit déjà commencé. Maintenant, la priorité pour la police, c'est d'établir tout bon fait et circonstances de cet incident-là. Et par rapport à ça, pour une bonne action policière qui poursuive.
1: Filhal, suraksha banaye rakhne ke liye, ilake mein subah se hi gashti jari hai.
0: Saal ki shuruaat se ab tak desh mein chikungunya ke 3,476 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सर्दी की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। साल की शुरुआत से ही अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन चिकुनगुनिया को लेकर यात्रा स्वास्थ्य सलाह जारी कर रही है। पिछले हफ्ते

0: मॉरिशस को लेकर स्तर 2 की स्वास्थ्य सलाह जारी कर दी गई है। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर विवरण पूजा हस्ताबिर सुकालू का।
1: इस वर्ष की शुरुआत से देश में चिकुनगुनिया के 3000 से भी अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि सर्दियों के आगमन के साथ मामलों में कमी की उम्मीद है, फिर भी कई इलाकों से हर दिन नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर फाजिल कुदाबुकस कहते हैं, शनिवार को चिकुनगुनिया के 87 मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में 110 सक्रिय मामले पाए जा रहे हैं। साल की शुरू से मॉरिशस में चिकुनगुनिया के 3478 मामले पाए जा रहे हैं और रोड्रिक्स में 11 मामले। सर्दी के प्रवेश से चिकुनगुनिया के मामलों में कमी नोट की जा रही है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने एसएमएफ के सदस्यों के समर्थन के साथ बोबासा में कोलोनल मैगाव का दौरा किया, जहां चिकुनगुनिया के 2 नए मामले पाए गए। वहां के निवासी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। रीता मुरार कहती हैं, बहुत से लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, चाहे पड़ोसी के यहाँ ये बीमारी पाए जा रहे हो। राजन किसना कहते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ लोग सतर्क हैं, जैसे कि कचरे को जहाँ पर फेंकना चाहिए वहाँ पर फेंका जाता है। रोजमे अमा कहती है, मैं सावधान रहती हूँ, मैं फूल के गमले को साफ सुथरा रखती हूँ, पानी जमा नहीं होने देती, पत्ते हो या कचरा सब हटा देती हूँ। जहाँ कुछ निवासी सतर्क बने हुए हैं, वहीं अन्य कम सतर्क दिखाई दे रही है। लिजेट एलियोनो कहती है, कुछ लोग अभी तक लापरवाही कर रहे हैं, सड़कों पर कचरा फेंकने से नहीं हिचकिचाते। इस वर्ष की शुरुआत से चिकुनगुनिया के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण 14 मई को अमरीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने मॉरिशस यात्रा को लेकर दूसरे स्तर की स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। स्तर 2 पर सख्त सावधानियां बरतने की सिफारिश दी जाती है।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में एक ऐसे आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थानों और राज्य के कामकाज से जुड़े कई बड़े सुधारों की समीक्षा करेगा। वकील रामा वालाइदेन का मानना है कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र को और मजबूत करना और मॉरिशस को भविष्य की नई चुनौतियों और वास्तविकताओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज दोपहर को भारतीय श्रमिकों की ऑनलाइन भर्ती के लिए एक सिस्टम का आधिकारिक तौर पर शुरुआत की। मॉरिशस और भारत के बीच हुए समझौते के बाद ये प्रोजेक्ट हकीकत में बदला है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मॉरिशस के कंपनियों के सामने आ रही कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड का कहना है कि निर्माण और कृषि उद्योग जैसे सेक्टरों को कर्मचारियों की भर्ती में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कंपनियों के विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। पिछले साल 15 लाख से अधिक पर्यटकों ने देश का दौरा किया, जिससे लगभग 103 बिलियन रुपए की कमाई हुई। समुद्र तट के होटलों को चुनने वाले होटलों पर्यटकों के अलावा अब ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपार्टमेंट, विला और बंगले किराए पर लेना पसंद करते हैं। इससे उन्हें अपनी यात्रा के दौरान देश को बेहतर ढंग से जानने का भी मौका मिलता है, साथ ही वे मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रही हैं। एमएसएम की शिक्षा समिति ने आज दोपहर को शिक्षा मंत्री महेन गंगा पौसाद की कड़ी आलोचना की। यह आलोचना लीला देवी दुखन लक्ष्मण की अध्यक्षता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट की कमी की निंदा की और कहा कि मंत्री को एक सही रोड मैप पेश करनी चाहिए। उन्होंने जनवरी 2027 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा को समाप्त करने की घोषणा की भी आलोचना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा उठाया गया, स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। समिति का मानना है कि मोबाइल फोन एक उपयोगी शैक्षिक उपकरण हो सकता है, बशर्ते कि इसके लिए स्पष्ट नियम बनाया जाए। सगा उनो की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
2: प्रेस के समक्ष डेल के शिक्षा आयोग ने शिक्षा मंत्री द्वारा

0: ऐलान किए गए शिक्षा सुधार पर चर्चा की। पूर्व शिक्षा मंत्री लीला देवी दुखन लक्ष्मण ने सुधार की तरक्की और शिक्षा प्रणाली के लिए ठोस दिशा निर्धारण पर सवाल उठाया।
1: In a fort demand que le ministère dévoile enfin son plan d'action. Vous êtes un blueprint. Il révèle quoi? Un plan d'action, un plan de construction. Et malheureusement, jusqu'ici, personne, absolument personne, pas connu, qui est non dans ce plan-là. Le peuple, les étudiants, expectent qu'il ministre finalise ce document de la réforme éducative.
0: इस प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा प्रणाली से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, खासकर नई शैक्षणिक और तकनीकी वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की चुनौतियों पर।
2: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। इंटरफेथ सिंपोजियम यानी कि अंतरधार्मिक सम्मेलन का चौथा संस्करण इस समय पाई के बहाई केंद्र में हो रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों से आए कई प्रतिभागी इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रही है। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच बेहतर समझ बढ़ाना और विविधता में एकता को बढ़ावा देना। उर्वशी बिकारी बंजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
0: विचार विमर्श का मुख्य विषय रहा साथ मिलकर रहने की भावना और सामाजिक एकता, न केवल मॉरिशस में बल्कि पूरे क्षेत्र में। काउंसिल ऑफ रिलीजन के अध्यक्ष पादरी फिलिप गुपी ने कहा, हर एक धर्म के धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है ताकि साझा मूल्यों को जान सके, ताकि व्यक्ति एक धर्म की पूर्व धारणा से परे उसे बेहतर समझ सके उसके केंद्र में क्या है। इस दौरान सहिष्णुता, आपसी सम्मान और विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। रिलीजन्स फॉर पीस के सचिव डॉक्टर कुरिया फ्रांसिस ने कहा, हमारे पास चिकित्सा, सुलह और क्षमा पर मैनुअल हैं। विभाजन और सामाजिक तनाव के इस वैश्विक दौर में वक्ताओं ने अंतरधार्मिक वार्ता के महत्व को उजागर किया।
2: कहानी एक ऐसे शिक्षक और लेखक की है जिन्होंने अपने ज्ञान और कड़ी मेहनत से न केवल विद्यार्थियों को प्रेरित किया अपितु साहित्यिक दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। फॉरेस्ट साइड एसएसएस बॉयज कॉलेज में कार्यरत गौतम लाल बिहारी की पहली सृजनात्मक रचना का लोकार्पण कौंजाबल के काशीनाथ मंदिर में किया गया। कई महानुभाव उपस्थित रहे जिनमें कला एवं सांस्कृतिक मंत्री शामिल थे। पूजा सुकालू की रिपोर्ट।
3: जनता की सत्ता कब होगी साकार? सत्ता से छूटेगा कब निजी अधिकार? मानवता की सत्ता का भव्य आगार निर्मित होगा कब अखिल संसार?
4: आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचित करा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 38 वर्षों का अनुभव हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं गौतम लाल बिहारी के बारे में। कोविड काल के दौरान उनकी लेखन यात्रा शुरू हुई और इसी का परिणाम है उनकी नई पुस्तिका गंतव्य, जिसका हाल ही में कौंजाबला के कैलाशनाथ मंदिर में लोकार्पण समारोह हुआ।
5: लेखन क्यों होता है? ताकि हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे व्यक्ति को हम बना सके। गंतव्य में 51 कविताएं हैं और 22 कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं जिसको मैं कहता हूं। और देखिए, जीवन में सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने गंतव्य की तलाश में है। गंतव्य का मतलब है मंजिल। मंजिलें बहुत होती हैं, लेकिन मंजिल को पाने के लिए रास्ते जो होते हैं, उन रास्तों से गुजरते समय आप जो करते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में आप लग्न हो जाए।
4: वर्तमान में गौतम लाल बिहारी फॉरेस्ट साइड के एसएसएस बॉयज में हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनकी लेखन और शिक्षण के प्रति समर्पित मेहनत ने उन्हें शिक्षा जगत में विशेष सम्मान और पहचान दिलाई है। इस समारोह में कई महानुभाव उपस्थित रहे जिनमें कला एवं सांस्कृतिक मंत्री महेंद्र गोंदिया शामिल रहे।
3: मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है वो सफर जो दिल

0: Ajayi. Trop souvent, nous croyons que le succès saisit quand on arrive là-haut.
1: सफलता केवल वो नहीं जब हमें किसी उपलब्धि के लिए सराहा जाता है या सम्मानित किया जाता है। ये एक सच्चाई है। असली सीख तब मिलती है जब हम गिरते हैं और खुद ही उठना सीखते हैं। इसी क्षण में हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। खुद पर संदेह होने पर भी हम अपने आप में सुधार लाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें प्रगति की ओर ले जाती है और हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद करती है।
2: जीवन के अनेकों रास्ते चलते रहते अनवरत फल वास्ते।
1: अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
3: कल रविवार को ये खबर बड़े झटके की तरह आई। कला के क्षेत्र में कई लोग इसे एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक नुकसान बता रहे हैं। मूर्ति नागालिंगम उन कलाकारों में से एक थे जो दूसरों के साथ ज्ञान बांटने और अपनी बेमिसाल सादगी के लिए जाने जाते थे। इस साल जुलाई में आयोजित होने वाला सालों दे मे में उन्हें विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही इस बड़े कलात्मक आयोजन की शुरुआत की थी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वीडन के गोटेनबर्ग शहर में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनके 5 देशों की यात्रा का एक अहम पड़ाव भी पूरा हो गया, जिसमें इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और नेदरलैंड्स की उच्च स्तरीय यात्राएं शामिल थी। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
4: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के नतीजे में 6 अहम रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत बुनियाद डाली गई। मानव विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देते हुए सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत की गई। व्यापार, निवेश, प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीनीकरण, जलवायु परिवर्तन पर खास बल दिया जा रहा है।
5: हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
4: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टेसन ने इस दौरे को संगमीर की हैसियत दी। उन्होंने कहा,
6: टुडे वी हैव लॉन्च्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप and joint action plan.
4: आज हमने एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। हमने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त कार्य योजनाओं पर सहमति जताई। हम सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं, नए सेक्टरों को शामिल कर रहे हैं जो भविष्य का निर्माण करें।
6: Emerging technologies, AI, space and geospatial technology along with the green transition, of course.
4: ये स्वीडन यात्रा ऐतिहासिक भारत EU समझौते के लिए भी महत्वपूर्ण रही। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लायन से भी मुलाकात की।
7: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals.
4: हमने कामयाबी के साथ अपने ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते पर बात की, जो सभी समझौतों की माँ यानी मदर ऑफ ऑल डील्स है। करीब 2 बिलियन लोगों की आबादी, जो वैश्विक GDP के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और 90% से ज्यादा टैरिफ छूट की अक्कास है। तिजारत और निवेश को बढ़ाने की संभावनाएं हैं। स्वीडन से भारत तक इस संधि से हमारी जनताओं को लाभ होगा। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते, इसीलिए साल के आखिर तक इस संधि पर दस्तखत करना चाहते हैं।
7: There is no time to lose in turning this opportunity in reality. And that's why we are committed to sign the agreement by the end of the year and making it fully operational at record speed.
4: भारतीय प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के बेहतरीन और कामयाब तरीन उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और कारोबार की नवीन और उभरती संभावनाओं पर बात की।
5: सरकारें केवल फ्रेमवर्क सपोर्ट

0: और पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है। जमीनी स्तर पर असली बदलाव आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा।
1: उधर अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी धमकियों और संभावित अमेरिका इजराइल हमलों के डर के चलते तेहरान सरकार अपनी जनता को जमीनी हमले के लिए तैयार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में तेहरान समेत अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों और वीडियो में सार्वजनिक स्थानों पर गन ट्रेनिंग के कियोस्क नजर आ रही हैं। और अंत में मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर थोड़े से बादल घिराएंगे और हल्की सी बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः पश्चिमी तथा दक्षिणी समंदरों के उस पार न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 5:40 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:32 पर।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम शिव को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: आयुषोक समाचार सुनते हैं। रल रोड रियोंबेल सुरीनाम में, रल रोड रियोंबेल सुरीनाम में 72 साल के 72 years old के श्री नवरतम हीरा जिन्हें सब लोग नान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रल रोड रियोंबेल सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सैंपल में 79 साल की 79 years old की श्रीमती सुबावती कोसी जिन्हें सब लोग सनमत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भांजे श्री रवि अविनाश उचाईबो के घर एवेन्यू उस्मान सैंपल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। गोपाला लेन मेबर्ग में 83 साल की 83 years old की श्रीमती पिचाई कोरा चिनिया रामुना श्रीमती पेचाई कोरा चिनिया रामुना जिन्हें सब लोग सूर्या के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई।

यह है उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर गोपाला लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉयल रोड रिश्तिया में

से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। एसएसओ लेन बुनाकई में 68 साल की 68 years old की श्रीमती देवंती लक नारायण जिन्हें सब लोग रीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनके बेटे श्री विक्रम भजन के घर एसएसओ लेन बुनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। नंबर 12 अवेन्यू लासूस पाल्मा कैथ्रोबोन में 87 साल की 87 years old की श्रीमती लक्ष्मी सोनिया पैदाशी नाम इतु और जिन्हें सब लोग आजी गोनू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर नंबर 12 अवेन्यू लासूस पाल्मा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुमरो एट 11 AM। मोंडेजिया रोड प्लेमायो में 54 साल की 54 years old की श्रीमती शीला गुजादा पैदाशी नाम नंदलोल और जिन्हें सब लोग नीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री रविंद्रनाथ गुजादा के घर मोदेजिया रोड प्लेमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

MBC Radio 24 hours a day. चौरानवे पंचानवे दशमलव छः अठानवे दशमलव दो आप सुन रहे हैं और एम थ्री

0: नहीं सो। सोमवार 18 मई घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे। रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। मैं सुमी आ चुकी हूँ आपका साथ देने के लिए और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हम आपके साथ साथ रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन अच्छे से बीता होगा। अभी से लेकर 7 बजे तक आप सुन पाएंगे नई सोच इस प्रोग्राम को और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो देर किस बात की है, चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है नई सोच के दौरान इसे शुरू करते हैं। और ये जो पहला तराना है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करेंगे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में।
1: You're listening to RM3 Radio।

0: RM3 Radio. Radio.
1: शाम के 6:42 आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी जो है विलाज दे मौताबा यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। मौताबा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर बुधवार 20 मई को सुबह के 9 बजे से सपैर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से। और चलिए कहते हैं ना कि एक नई सोच, एक नया विचार, एक अच्छा थॉट हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम जीवन में जोड़ते हैं तो वो न जाने हमारे जीवन के कितने पहलुओं को जो है वो टच करता है, वो कितने पहलुओं को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे जीवन में हमेशा हमें ऐसे तो बुराई चारों ओर है, बुराई तो हमारे भीतर भी है, लेकिन अच्छाई को देखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए क्योंकि हर बुराई में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर छुपी होती है, है ना। चलिए गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं और खामोशी फिल्म का ये गाना आप सबके नाम करते हैं। कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में।

0: नई सोच।
1: और तो चलिए इसी के साथ नई सोच इस प्रोग्राम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। खूबसूरत गाने के साथ यहाँ पर 6:30 बजे हमने शुरुआत की थी और देखते ही देखते कभी आधे घंटे का नई सोच का सफर खत्म होने को चला, पता ही नहीं चला, जाते जाते कभी अलविदा ना कहना फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम करते हैं। और इस गाने के तुरंत बाद शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। सो नॉट टू फॉरगेट, यू कैन सेंड योर डेडिकेशंस ऑन 5250 6200 पर।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं।
2: You're listening to RM3 Radio मनोरंजन।
1: वही थोड़ा सा मन थोड़ा सा लगा। मैं अभी से निकलना भी चाहती हूँ तो पता नहीं कैसे क्या देखते हैं अब।

0: दिलों की आवाज
1: जिन्हें दिलों की आवाज है जहां पर आपकी दिल की बातें हम सुन रहे हैं आपके डेडिकेशंस आपकी फरमाइशों के जरिए और जितने भी हमारे सुनने वाले इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं आपको पता है कि यहां पर हम थोड़े से रोमांटिक थोड़े से सूदिंग गाने चलाते हैं हम ज्यादा लाउड गाने नहीं चलाते हैं तो बहुत सारे लोग कभी-कभार ऐसे गानों की फरमाइश करते हैं जो इस सेगमेंट में फिट नहीं होता है जो थोड़ा लाउड होता है तो फिर कभी-कभार हम उसे चलाए या नहीं चलाए हम भी सोच में पड़ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा गाना ऐसा हो जो रोमांटिक हो जो दिल को भाए जो 90s के हो 80s के हो नए गाने भी बेशक आप मांग सकते हैं इसमें कोई ये नहीं है और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे यहाँ पर खूबसूरत सा तराना है डोली सजा के रखना फिल्म का ये गीत है अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में MG श्री कुमार जी की आवाज़ में और यहाँ पर थोड़ी देर में हम हमारे TikTok पेज पर लाइव भी होंगे जहाँ पर आपके लाइव डेडिकेशन हम शामिल करेंगे

0: यकीनन कभी कभार किसी से किसी अपने से जुदाई जो है सही नहीं जाती है ना, और जुदा होकर बात नहीं करने से अच्छा है जो भी मनमुटाव है उसे दूर करे, सभी दूरियों को मिटाए और जहां तक हो सके प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। दुश्मन फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुन रहे थे।
1: दिलों की आवाज़ 7:20।
0: दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। स्वेनल हमारा साथ दे रही है, कह रही है लिसनिंग टू यू, कह रही है 4 बजे जो पंकज उदास जी पर प्रोग्राम हमने किया उन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो सो मच। और अगला गाना आपके नाम हम करेंगे विवाह, एक विवाह ऐसा भी फिल्म का ये तराना है। ऐसे ये फिल्म बड़ी कमाल की है, विवाह हो या एक विवाह हो, और दोनों ही फिल्में बहुत ही अच्छी है, एक अलग स्टोरी लाइन है और फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के हैं। ऐसे फिल्में, ये दोनों फिल्में उतनी चली नहीं, लेकिन फिल्में काफ़ी रोमांटिक है, फैमिली ओरिएंटेड है ना। तो चलिए अगला गाना आपके नाम करते हैं, आपकी ओर से आपके भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्या, सभी तिलक फैमिलीज के नाम। और इस समय स्विट्ज़रलैंड से आंतिश रामशरण हमारा साथ दे रहे हैं। सो आंतिश, ये गाना आपके लिए भी है।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: तो चलिए बड़ा ही खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गाना अलका याग्निक यहां पर और सोनू निगम जी की आवाजों में 80s, 90s और 2000 के गानों की अगर हम बात करें 2000 के सालों के गाने इतने लाइवली हुआ करते थे गाने इतने रोमांटिक हुआ करते थे कि आज भी ये गाने जो हैं हमारे दिल में बसे हुए हैं तो चलिए ऐसा ही कोई गाना आप सुनना चाहते हैं तो बेशक हमारा साथ दीजिए इस समय सचिन जी पॉम्पलमोसिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अफसोस सचिन जी आपने जो गाना मांगा है जाने तमन्ना फिल्म का ये जो गाना है ये हमारे पास नहीं है कुमार सानू जी की आवाज़ में तराना है लेकिन कुमार सानू जी का एक अगला गाना हम आपके लिए चला देंगे उम्मीद करते हैं ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा गुलाम फिल्म का ये तराना है अलका याग्निक कुमार सानू जी की आवाजों में खासकर सचिन जी आपके लिए थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए

0: दिलों की आवाज ये प्रोग्राम ऑन आरएम थ्रू रेडियो मनोरंजन देखते ही देखते रात के पौने आठ बजने को है। दो घंटे का ये जो सफ़र होता है दिलों की आवाज़ का इन खूबसूरत गानों के साथ हमारे लवली लिसनर्स के साथ कनेक्ट होते होते बात करते करते कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। चलिए इस समय सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है और कह रही है कि अगला गाना हो जाए इनकी दीदी लालिता के नाम सभी कुशल फैमिलीज़ के लिए। साथ में आत्माराम भैया है, अनुषा, किरण, कृषय, वंश, वैभव, वीर, निया, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। इस समय सभी रामरतन परिवार हमारा साथ दे रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और इस समय हम हमारे रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। वी हैव नीन, मनीषा, आयशा, दीशा, महेश, माधुरी जी, तरन, संध्या, आत्माराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम जी। और साथ में आरती जी है, तो चलिए साथ देते रहिए हमेशा ऐसे ही हमारा और इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में दीवार फिल्म का ये गाना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम चल पड़ा।
1: तू तुम्हें
0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
0: क्या है

0: दिलों की आवाज
1: चलिए दिलों की आवाज ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन और हर मंडे की तरह हम यहां पर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए। रात के 9 बजे तक आपका साथ हम देने वाले हैं और यहां पर चलिए आपके डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। वी हैव उषा देवीना, फिर आनिया है, कीर्ति, अमरीश, आशा जानू, तरन, नौशाद, ये सभी हमारे जो फॉलोअर्स है टिकटॉक के पेज पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे प्रोग्राम के साथ भी जुड़े हुए हैं। वी हैव नौशाद, विनय जी फ्रांस से हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। अगला गाना आपकी प्यारी बेटियों के नाम सानवी है, केशनी है, एंड योर लवली वाइफ लीना। वी हैव स्टेसी, शामीमा, संजू, शब, गुलनार, अक्षय हमारे साथ स्पेन से साथ दे रहे हैं, हेलो मुकेश जी, लास्ट समुराई आपको भी हम नहीं भूले हैं, हेलो आशना, आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है। दिनेश गोपी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए भी, हमेशा की तरह आज भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। हाय एवीना, जेन है, सुनीता है, सरिता है, फाजिला है, इतने सारे लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाएंगे। किसी ने हमसे कहा था माधुरी दीक्षित का अगर कोई गाना हो तो चला देना, तो चलिए हम माधुरी दीक्षित का सैलाब फिल्म का ये गाना आपके लिए चलाएंगे और ये यही गाना जाता है करिश्मा आपके लिए। सचिन हमारा साथ दे रहे हैं एंड देन वी हैव डैनी, बेबी, नबीला, गीता सिवालक जी, क्रिश, रजनी, नितीश, सभी बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट टू फॉरगेट 5250-6200 पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव है, वहां पर भी आप हमारा साथ दे सकते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज। चलिए इट्स मंडे 18th ऑफ मई, रात के 8:05 होने को है। दिलों की आवाज के इस सेकंड आवर में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं, आप सभी का स्वागत हम करते हैं, जहां कहीं से भी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो सो मच। बहुत से लोग इस समय डिनर करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बुना पेची कहेंगे आप सभी को शुभ आहार। और यहाँ पर इस समय रिहाना जी हमारा साथ दे रही है फिनिक्स से, और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव यहाँ पर रफ़िक जी, मोहित जी तायाक से हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच रफ़िक जी। और अगला गाना आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए, थैंक यू वेरी मच। देन बहुत सारे हमारे जो टिकटॉक पर जो हमारे फॉलोअर्स इस समय हमें देख रहे हैं, थैंक यू। वी हैव प्रिंसेस, वी हैव प्योर सोल, दान, नताशा, शेन, इंदिरा, वी हैव अनुचेता जी, अगला गाना आपके लिए अनुचेता मोहन। हाय मिमी, हाय एलएफसी। वी हैव यहाँ पर हमारे साथ मिमी है, अगला गाना मिमी आपके नाम, मेलिसा आपकी बेटी के लिए। साथ में वी हैव खीरा देवी, चांद, लव, बानेश, वी हैव शीशा, हाय शीशा जी, वानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वीर है, गियाना अगला गाना आपके नाम, आसमा फिल्म का ये तराना है। देन वी हैव पूजा, सरोजा, ज्योति, और इस समय संध्या जी हमारा साथ दे रही है, शुक्रिया संध्या जी। प्रिया, शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव किरण, वी हैव प्रतीश, सूरज जी हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकिशोर दा की आवाज़ में ये गाना चल पड़ा, आसमा फिल्म से लिया गया, बन के नज़र दिल की जुबान। नॉट टू फॉरगेट, आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं 5250600 पर। उम्मीद करते हैं गानों का सिलेक्शन आप एंजॉय कर रहे होंगे। कोई ब्यूटीफुल सा रोमांटिक सा तराना सुनना चाहते हैं या किसी के नाम करना चाहते हैं, बेशक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और टिकटॉक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।

और चलिए राम लखन फिल्म का ये जो गाना है यहाँ पर चल पड़ा है, जितने लवली लिसनर्स साथ दे रहे हैं थैंक यू सो सो मच। वी हैव हंसराज ओवर हियर, फिर वी हैव इंदिरा जी जो इस समय हमें सुन रही है, गाना जाता है राजेश के नाम, साथ में सभी सुनने वालों के लिए। वी हैव निर्वाण, वंदना जी इस समय काम करते करते हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू वेरी मच। अगला गाना आपकी ओर से सभी करिश्मा के नाम और सभी और श्री राम के नाम। नताली थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। वी हैव देव, वी हैव मालिनी, एस वेथ्रीवेल, हुस्ना बिस्वानी जी अगला गाना आपकी ओर से सभी जमन फैमिलीज के नाम हम करते हैं। शाहिद जी पाकिस्तान से इस समय टिकटॉक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। वी हैव प्रेरणा, लव आपने जो गाना मांगा है थोड़ी देर में आपके लिए हम चलाने की कोशिश करेंगे। हाय परी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी हैव फरहा,

हाय फरहा, उम्मीद करते हैं गाने आप एंजॉय कर रही हैं। वी हैव विलीन संकेश, अगला गाना सभी सुब्रन फैमिलीज के नाम। उत्तम जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुपमा जी थैंक यू आपके प्यार भरे साथ के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: चलिए ऐसे हम भी यहां पर आप लोगों के नाम ही जोड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में एक के बाद एक आपके डेडिकेशंस हम इंक्लूड कर रहे हैं शामिल कर रहे हैं शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए ऐसे जितने लिसनर्स आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी को हमारी ओर से रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और यहां पर चलिए अगला गाना पिंकी आपके नाम वी हैव चांद ज्योति सुमन कनाडा से इस समय योगेश स्वीटी और मिष्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू वेरी मच हाय डोमिनिक थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए वी हैव प्रिया संगीता लक्षणा सुजाता अमिता रतन हेलो केनी हेलो माहेन हेलो शकील सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अगला गाना जो है सिम्बा फिल्म का तराना है यहाँ पर राहत फतेह अली खान अनीस कौर और तनिष्क बागची की आवाज़ों में तेरे बिन ये गाना जाता है लव आपके नाम और वी हैव रायशा योहानी सुबिराज सेल्वी है स्वीटी है अंजनी है सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं

0: दिलों की आवाज़।
1: कहते हैं जब आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला कोई होता है, बिना कहे ही जिसे आप अपनी दिल की सारी बातें जिसे जता सकते हैं, या सामने वाला आपकी बिना कहे ही सारी बातों को समझ जाता है, ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई हमसफ़र, ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ में है, तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए आपकी दिलों की आवाज़ को हम सुन रहे हैं, और शुक्रिया साथ देने के लिए भी हवा, मीना, शेला, शारदा, सभी हीरामन परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। वी हैव रोनित, सुनीता, जीतन जी, दीपशिका, डीजे, वी हैव एलीना, प्रिंसेस प्रिंस दोनों ही साथ दे रहे हैं। यामिनी जी, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। ऐसे यामिनी, ये नाम उस फिल्म में था ना, एक एक्ट्रेस का, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है ना। शबाना आजमी का नाम यामिनी था। ओके, भारती जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैंडी, जेवीना, थैंक यू। ए जी, अगला गाना आपकी ओर से, अंजू के नाम, शाइना के नाम और रेहाना के नाम। और राइट, वी हैव मदीना, रीना, रीना, अगला गाना आपकी बेटी रूही और आपके हस्बैंड अविनाश के नाम हम करेंगे। आर्यमी, शुक्रिया साथ देने के लिए। LFC बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं। पृष्टि, शुक्रिया साथ देने के लिए। हेलो शिवम, हेलो अमरीश। राधा जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वी हैव तेज, वी हैव वेनिशा, आशीना, अनुषा, सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं। और जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं, सुनीता राव का गाना है परी हूँ मैं। परी, ये गाना आपके लिए।

चलिए देखते ही देखते रात के 8:36 हो चुके हैं। खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, गानों को आप एंजॉय कर रहे हैं, शो को आप पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो सो मच। और अगला गाना जो है सर फिल्म का ये तराना होगा। यहाँ पर युगेन जी इस समय टिकटॉक से हमारे साथ जुड़े हैं और भूटान से हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ये सर फिल्म का ये जो अगला गाना है हम आपके नाम करेंगे और यहाँ पर आपके पूरे फैमिली के नाम, ओके। भूटान से जितने भी हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के नाम इस गाने को हम करते हैं। खतीबा जी यही गाना आपके लिए भी, रानी यही गाना आपके लिए जाता है। हाय केजू, प्रकाश, मेधा और सभी स्वरूप फैमिली के लिए जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो इंदिरा जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं, ये गाना आपकी ओर से प्रतिमा के नाम, चेष्टा के नाम और आपकी प्यारी नातिन रैना के लिए भी। ऑल राइट, वी हैव रे, दीप्ति, संजय, वी हैव मिंटा, कल्याण, सभी ही बड़े प्यार से हमें सुन रहे हैं। सर फिल्म का ये गाना चल पड़ा है, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चले दिलों की आवाज़। ये जो प्रोग्राम है चलता है हर रोज़ रेडियो मनोरंजन पर शाम के 7 से रात के 9 बजे के बीच, और जहाँ पर आप सभी बड़े ही प्यार से हमारा साथ देते हैं। बहुत से लोग इस समय काम से लौट चुके हैं, घर पर है, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते बिताते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बहुत सारे लोग इस समय काम करते करते हमें सुन रहे हैं, टिकटॉक के ज़रिए हमें देख रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने थोड़ी देर पहले कसूर फिल्म का गाना जो है इसकी फरमाइश की थी, तो चलिए कसूर फिल्म का ये जो गाना है आप सभी के नाम हम करते हैं। जितने भी हमारे लवली लिसनर्स साथ दे रहे हैं रेडियो के ज़रिए, इसके लिए शुक्रिया। टिकटॉक के ज़रिए वी हैव मैनी लिसनर्स ओवर हियर, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव राकेश, मानती, पल्लवी, शाइलेन, वी हैव दीजा, कृष्णा, माधवी, करिश्मा, साधना, रीता, स्वीटी, विजय, दीप्ति, और केशव है, प्रिंसेस है, और प्रिंसेस ने अगला गाना अपनी सासू माँ के नाम, अपनी मदर इन लॉ के नाम मांगा है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपने लिए, अपनों के लिए गाना डेडिकेट करते रहिए, और हमारी भी पूरी कोशिश है कि सभी के सभी डेडिकेशंस हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अभी के लिए कसूर फिल्म का ये तराना चल पड़ा है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। जिंदगी बन गए हो तुम, और इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रहे हैं। अगला गाना आपके सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी फैमिलीज के लिए, रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए अभी के लिए मेजर साहब फिल्म का ये जो तराना है, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथी की आवाज़ों में चल पड़ा है प्यार किया तो निभाना, जो गाना है पिक्चराइज हुआ था अजय देवगन और साथ में थी सोनाली बेंद्रे। और इस फिल्म में ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन नज़र आए थे मेजर साहब के रोल में। और चलिए जितने भी सुनने वाले साथ दे रहे हैं, टिकटॉक के जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो सो मच। वी हैव कैलाश जी, वी हैव रीना, वी हैव उदय जी, निशी, अगला गाना आपके नाम, आपके हस्बैंड विनय के नाम, वृष्णि जी, शुक्रिया साथ देने के लिए।

0: खुशियों की आवाज।
1: बिल्कुल, प्यार किया तो निभाना, और इसी के साथ हमारे जाने का समय हो चला है। और बहुत बहुत शुक्रिया, जाते जाते दिल से आप सभी का शुक्रिया हम करते हैं, इतने प्यार से आप हमारे साथ जुड़े रहे और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में साथ देते रहे। उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने टिकटॉक के ज़रिए हमारा साथ दिया। तो चलिए, ये आखिरी गाना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। 9 बजे से जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे, हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन पर। बादबाग विदेशी जी, अभी आपका मैसेज हमें मिला है, तो जाते जाते ये आखिरी गाना आपके नाम भी करते हैं तायाक से, और साथ ही आपकी स्वीटहार्ट अनुषा खेदन के नाम, जो मौताबा से हमारे साथ जुड़ी हुई है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
2: सोमवार 18 मई घड़ी मिला ले जा रात के 9:03 हो गए बातें।

रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पे आप सबको एक स्वागत बातें समिता की ओर से नमस्कार स्वीकार कर जा भोजपुरी तड़का ही कार्यक्रम लेके हम निहाल है जा आप सबको एक साथ दे के आप सबको एक मनोरंजन करे के भोजपुरी गीत संगे ताशा करत है जा के आज के जो दिन हा अच्छा से बीतल हो तभी से लेके रात के 11 बजे लेक हो भरपूर मनोरंजन सकबा जाई कार्यक्रम में भाग ले अपन फरमाइश हमनी तक पहुँचाई 4028085 पर सकबा जा मैसेज करे 5251705 पर और विष्णु हरी जी की गावल ई गीत संगे आज के कार्यक्रम के हमने शुरू करत है जा

0: बहुत
1: तो संभवती दुमन जी के गावल गीत हम पहनीला सिंदूर और चले जा बड़प जा हमने अगला गीत की और बेलिया से भाई आत्माराम जी हमने के संगे जुड़ल हवन और ज्ञान में पतलाल जी के गावल गीत के फरमाइश कर ले हवन ए बबुआ तू न रो एक गीत उन करोर से दीदी प्रभावती बहन लालिता बहन छोटी बहन सुदेवी सबको खातिर और जितना श्रोता ए वक्त हमने के सुनत हवन ई कार्यक्रम से जुड़ल हवन ई गीत उन करोर से सबको खातिर भुलैया ने सक बजा 4028085 पर हमने के संगे जुड़े अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करें

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: चला जा भोजपुरी तड़का। ये प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चलता। रात के 9:28 हो गल बात थे। यहाँ पर ही हमने के संगे जुड़ल हवजा आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ब हमने अगला गीत की ओर चंद्रदेव जीवदन जी के गावल गीत है पैसा के पीछे न भाग। ये गीत खास कर फरमाइश आल बात ते त्यरुष से

0: भोजपुरी तड़का
1: चला जा आज बहुत से श्रोता जो ना हमने के फोन कर रहा था वन आप सबको एक मैसेज हमने के मिला था एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद चला जा बड़ा हमने अगला गीत की ओर अगला जन गीत है बासंत सिपोल जी के गावल गीत है लफलोरा से राजन लक्ष्मण जी हमने के संगे जुड़ल हवन है ये अगला गीत उनकर ओर से उनकर पत्नी माला खातिर बेटी है प्रार्थना प्रगति उनकर बहन मानती भतीजी उर्मिला और लाफ्लोरा के सब लक्ष्मण परिवार खातिर ये अगला गीत खास कर और यहाँ पर ही सगबजा हमने के मैसेज करे 5251705 पर नहीं तो सगबजा फोन करे 4028085 पर

0: भोजपुरी तड़का।
1: देखते देखते रात के 9:55 यहाँ पर ही हुआ था। बड़ब जामनी अगला फरमाइश की ओर, अगला जुन गीत था एक और फरमाइश आलबाते भाई आबू की ओर से। भाई आबू विक्रम कोलाचंद जी के गावल गीत के फरमाइश कर ले हवन धोती पोती पगड़ी, ये गीत उनका ओर से खास कर आफेज असलम आयाज जयान जहीरा राइज खाला छोटी आपे उनकर पत्नी हमने के पूरा टीम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई आबू। और जितना श्रोता बखत हमने के सुनत हवन हमने के संगे जुड़ल हवन नाइट शिफ्ट करते करते काम करते करते कार्यक्रम के सुनत हवन ते गीत भाई आबू की ओर से सब कोई खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में रात के 10:08 दूसर का घंटा में आप सबको एक स्वागत बातें रात के 11 लेक चली प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर ही कार्यक्रम ये बखत चला था और चले जाए अगला गीत सुंभावती दुमन जी के गावल गीत और ये गीत खास कर चाची लालिता आपके खातिर थ्रियोले से हमने के संगे जुड़ल हवन कार्यक्रम के सुनत हवन सब कुशल परिवार खातिर ये गीत उनकर ओर से बहन सुदेवी बहन देवीना बहन ज्ञानी दीदी छोटी दीदी प्रभावती भाई आत्माराम भाई हरीश चाची सुखलाल मौसी सुखलाल खातिर और यही गीत उनकर पतो उषा खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: और चले जा भोजपुरी तड़का में अगला गीत की ओर। हमने बड़प जा सुना नवीन जी के गावल गीत और ये गीत के फरमाइश पूंजी साख से उमा जी की ओर से आल बातें कौन फुलवा और ये गीत उमा जी मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर और यहाँ पर ही सब श्रोता लोग खातिर जोनी बखत जो कार्यक्रम के सुनत हवन।

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास

दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा। जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: भोजपुरी तड़का।
1: और चला जाए इबखत बादवाग विदेशी हमने के संगे जुड़ल हवन और अगला गीत इनकर ओर से अनुषा खातिर और सब विदेशी परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: और चले जाए यहाँ पर अगला फरमाइश जो लीलो माथुर जी के गावल गीत कोइरिन के खेत और ये गीत खास कर पितो से अमृता जी फरमाइश कर ले हवन अमृता जी ये गीत मंगले हवन सोनिया परी खातिर यह गीत उनकर और से मीनाक्षी और ये विशान खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: और चले जाए एक के बाद एक फरमाइश हमने के मिले था और हमने पूरा कोशिश करत है जब सबको के फरमाइश पूरा करा के करे के और अगला गीत की और हमने बढ़ जा अगला गीत खास कर मादल बे के मीरा भाई धर्मिया खातिर मीरा भाई धर्मिया जी ये गीत मंगलियावन खास कर अपन पति आसदेव खातिर अपन बेटी दामाद खातिर सब धर्मिया परिवार और ये सब पाई दिया परिवार खातिर भूले या नहीं 4028085 है नंबर हमने के सक बजा हमने के मैसेज करे 5251705 पर

0: भोजपुरी तड़का।
1: और शैलजा भोजपुरी तड़का में अगला गीत विनोद सिवदत्त जी के गावल गीत श्रीमती जी सुयाग से हमने के संगे जुड़ल हवन और सब चंद्रमुनि परिवार खातिर ई गीत के फरमाइश कर ले हवन ठेला ठेली। और यह गीत के फरमाइश आल बातें वाकवा से सुदेवी जी की ओर से ई गीत उनकर ओर से उनकर दीदी लालिता खातिर सब कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालिंगा के सभी राम रतन परिवार खातिर और सब श्रोता लोग खातिर और हमने के पूरा टीम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: और ये गीत भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज की गावल गीत है, और ये गीत खास कर भाई माहेन आपके खाते, आपकी ओर से आपके दीदी मान खाते और सब जगमोहन परिवार खाते।

और एक साथ भाई बहन लोग आज के जो हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हाउस समाप्त हो जाए अंतिम गीत सरिता बुद्धू जी की गावल गीत खासकर ये गीत अनिता जी आपके खातिर फ्लिक ऑफ लाक से हमने के संगे जुड़ल हवन और आपके पूरा परिवार खातिर एक साथ भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम खत्म हो जाए 11 बजे सकबजा सुने सुनहरे पली प्रोग्राम विकास की प्रस्तुति में और ये रात के 12 बजे से कल फजीर लेक आप सबको एक मनोरंजन खातिर गीत जन है यहाँ पर ही चलते रही तो आप सबको एक साथ हमने के मिलल भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम में एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही रेडियो मॉरिशस से जुड़ल रहिए जा साथ देते रहिए जा नमस्कार और शुभरात्रि आप सबको एक हमने की ओर से।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल, और जहां पर हम जानते हैं कि आपका साथ निभाने के लिए एवरग्रीन ब्यूटीफुल गोल्डन हिट्स आ चुकी हैं एक के बाद एक। ये सिलसिला चलने वाला है पूरे एक घंटे के लिए, तो बस आज भी इन गानों के साथ जितना प्यार है इस प्यार को बरकरार रखिए और साथ दीजिए हमारा।

कहते हैं कि अगर सोच पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो छोटी सी रोशनी भी सूरज लगती है। जिंदगी मुश्किलों से भरी है, ऐसे मत सोचिए। नजरिया बदलना जरूरी है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सामान्य रूप से कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां लेकर आता है, पर हर दिन में कुछ परफेक्ट जरूर होता है। चाहे किसी से मिलना हो,

भाई कहते हैं कि जो कामयाबी है ना एक रात में नहीं आती, उसके पीछे बहुत सी मेहनत होती है, कोशिश होती है, परिश्रम। जो लोग गिर गिर के उठते हैं वही तो इतिहास लिखते हैं। शॉर्टकट से सिर्फ रास्ते छोटे होते हैं, मंजिल नहीं मिलती। तो बस धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए।

धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ी सी गर्माहट मिले तो कितना अच्छा लगता है। वैसे रिश्ते स्वेटर की तरह होते हैं, जी हाँ, वो गर्म कपड़े उनकी तरह होते हैं दोस्तों। प्यार से बुनोगे तो गर्म रखेंगे और अगर ईगो से खींचोगे तो टूट जाएंगे। हर बात पे जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ता बचाना भी जीत हो जाती है। अपनों के साथ वक्त बिताइए क्योंकि ये जो यादें हैं ना, यही तो जिंदगी का असली खजाना होती है, बाकी तो सब टेम्पररी है।

कहते हैं कि अगर इंसान में वो हिम्मत हो या फिर अपने अंदर विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल चुनौती हो सामने आ जाए इंसान डट कर उसका सामना करता है। बस खुद पर यकीन होना चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो सुबह रोशनी आती है। जो लोग चुनौतियों से गुजर रहे हैं उनकी कहानियां दुनिया याद रखती है। तो हौसला कभी मत खोना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे कहो ना।

बॉलीवुड के गाने हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर सोचें तो हर किसी की लाइफ जैसे एक बॉलीवुड की फिल्म होती है। किसी में रोमांस भरा होता है, किसी में फुल ऑन एक्शन। कभी हम हीरो लगते हैं तो कभी कॉमेडियन, पर एंड में इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितनी मुश्किलें थी। ज़रूरी ये होता है कि आपने अपनी कहानी कितने स्टाइल से जी। तो चलिए, हर एक एक्टर का स्टाइल, सिंगर का स्टाइल लेकर इस कार्यक्रम में कुछ पल को हमने सुनहरा जरूर बनाया होगा। इसी आशा के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी जल्दी। ध्यान रखिए और MBC रेडियो हमेशा आपके साथ। नमस्कार।

0: आज खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू? क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? नरगिस, क्या बात है?
1: हम आपसे निकाह नहीं कर सकते मुबारक।
0: ये क्या कह रही हो नरगिस? रहते और आप कह रही है कि आप मुझसे निकाह नहीं कर सकती? बात क्या है? हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
1: हम किसी

0: जावा।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: रेडियो मॉरिशियस।